सुनो शारदा 90.8 FM। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: एक बारी सिकंदर हमारे मुल्क में आया। सिकंदर का नाम तो जानते हो आप, अलेक्जेंडर। अब ये सिकंदर हमारे देश में आया, ये सिंधु नदी से पार किया, इसने सिंधु दरिया था, तो वहां पार करते ही एक साधु बैठे हुए हैं वहां पर। तो पहले साधु जंगलों में आम मिला करते थे, क्योंकि साधुओं की गिनती बहुत हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग शांत थे, जो शांत रहता है उसको साधु बनने में कोई मुश्किल नहीं है। अब अशांत आदमी कभी भी परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलता। ज्यादातर लोग इस बात के लिए दुखी रहते हैं कि महाराज जी मन नहीं लगता, पानी जपते हुए भी मन नहीं लगता, नाम जपते हुए भी मन नहीं लगता, भगवान भगवान करते हुए भी भगवान की तरफ मन नहीं जाता। क्यों? कारण उनसे पूछो, कारण क्या है? पहले तो वो बोलते हैं जी पता नहीं जी, कृपा करो, तो उनको कारण भी नहीं पता। चलो किसी आदमी ने, सियाने आदमी ने कारण बता भी दिया कि कारण क्या है, क्यों नहीं लगता, तो बोलेगा महाराज जी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब उसको कौन समझाए कि मन जो है ये कैसे करेगा, ऐसे नहीं कर सकता। आप भगवान की बात ऐसे नहीं कर सकते, भगवान की बात सुन भी नहीं सकते ऐसे। जब तक भगवान आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, सोचिए जरा, आप यहां आए हो और यहां आराम से बैठे हो, आप यहां आए नहीं हो, आप आए हो ये हम सोच रहे हैं कि हम आए हैं, पर कुछ लोग ऐसे लोग यहां जागे हुए पुरुष लोग बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग, सियाने लोग, रब के साथ जुड़े हुए लोग, आत्माएं बैठी हुई हैं, उनसे पूछेंगे कि आप आए हो, बोलेंगे नहीं, हमें तो परमात्मा ने बुलाया है। देखिए, एक ही आदमी दो तरह की सोच लेके बैठा हुआ है। ज्यादातर लोग यहां बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे आप आए हो, हां जी हम आए हैं, उनको पता नहीं है कि हमें बुलाया गया है, बिकॉज दे डोंट नो। उनको लगता है वो खुद आए हैं, क्योंकि वो जुड़े नहीं हैं। उनको क्या, कैसे आए, उन्होंने कोई मेरा सत्संग सुना, अच्छा लगा, किसी ने कहा वहां जाके दुख खत्म होते हैं, अच्छा दुख खत्म होते हैं, चलो। दुख खत्म करने के लिए कौन नहीं जाता, वैष्णो देवी तक पहुंच जाते हैं लोग, 14 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पैरों में पड़ जाती हैं छाले, फिर भी चलते हैं, जय माता दी हो रहा है। अब आदमी पूछे किसी से कि ऐसे क्यों, सुख चाहिए, माता से क्या चाहिए, माता से कुछ नहीं चाहिए, माता से सुख चाहिए, थोड़ा सा कष्ट हो भी जाएगा तो ठीक है, चलेगा। कारण सुख का है, तो क्या हुआ, उस साधु को सिकंदर ने देखा कि साधु चुपचाप से बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, और उस साधु को सिकंदर ने देखा और भागकर मत्था टेकने के लिए अपने रथ से, अपने घोड़े से उतरकर और मत्था टेका साधु को। सिकंदर धार्मिक प्रवृत्ति का था, सिकंदर की मां बड़ी सियानी थी, सिकंदर को हमेशा उसकी मां ने चलाया। मां बहुत ज्यादा सियानी होने के कारण मां उसको पल पल पल पल पल पल उसको धार्मिक प्रवृत्ति की थी मां, और उसने भी धर्म की उसके अंदर भी रख दिया। यूनान में भी बड़ा धर्म है, क्योंकि यूनान का एक एक सिस्टम है, यूनान कब से हमारे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जब से महाभारत हुई, ये अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु की जो पत्नी थी शायद वो यूनान से थी, यूनान की राजकुमारी थी ग्रीस की, तो उनका जो पुत्र था वो बाद में हमारे देश का राजा बना, क्या नाम था उसका, परीक्षित। परीक्षित का पुत्र जनमेजा है, राजा जनमेजा, जिसने धरती पर कलयुग आया, उसकी भी मैं कथा आपको सुना, कलयुग कब आया संसार में उसकी मैंने सुनाई हुई है कथा आप लोग, कलयुग कैसे प्रवेश किया। तो सिकंदर एक धार्मिक राजा होने के कारण वो साधु को मत्था टेकता है और साधु से कहता है कि साधु ए महापुरुष मुझे आशीर्वाद दो कि जिस कारण से मैं भारत आया हूं वो मेरा कारण पूरा होना चाहिए। तो साधु ने कहा, वो आंख बंद करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि राजन तुम कौन से कारण से आए हो भारत, कारण बता दो खुल के। उन्होंने कहा मेरा कारण है भारत में आने का, मैं दुनिया को जीतना चाहता हूं, भारत को जीतना चाहता हूं, भारत के लोगों को जीतना चाहता हूं। अच्छा अभी क्या करना चाहते हो, बोले अभी एक राजा है यहां पर उसको जीतूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए मैं जीत सकूं। उसके बाद बोले उसके बाद मैं दूसरा राजा जीतूंगा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा छठवां करते मैंने इस भारत पर विजय प्राप्त करना, इस भारत को जीतना है। बोले अच्छा फिर क्या करोगे, अब आपको कोई पूछे कि आप पैसे कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, किस लिए, सुख के लिए, किस लिए कमा रहे हो, सुख मिले, घर में पैसा आएगा सुख आएगा, नहीं आएगा पैसा तो सुख भी नहीं आएगा, सोच तो यही है। राजा ने भी, सिकंदर ने भी कहा कि मैं तो संसार जीतना चाहता हूं, तो आशीर्वाद दीजिए मैं दुनिया जीत जाऊं, भारत जीत जाऊं। बोले भारत जीत के क्या करोगे, बोले मैं भारत जीत कर बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, फिर क्या होगा। फिर सोचने लगा, सोचते सोचते कहता फिर मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं आराम करूंगा। बोले इतना सब कुछ मारने मिटाने के बाद, इतने राजाओं को हराने के बाद, इतनी फौज मारने के बाद, इतने लोगों का कत्लेआम करने के बाद भारत जीतोगे और भारत जीतने के बाद तुम आराम करोगे, राजा ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर तुमने इतना घूमकर आराम करना है तो फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं रास्ता आराम करने का, आओ मेरे साथ यहां बैठ जाओ, मैं भी आराम ही कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आराम कर। सिंपल मेथड, आराम ही करना है अगर इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद, तो फिर पहले ही आराम कर लो, पहले ही उस पर पहुंच जाओ, आराम को प्राप्त करो, तो क्यों इतना थाम छाम। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उस सोच से वो परेशान है कि मैं बड़ा बनूं और मैं कुछ करूं। अब कुछ करूं उसे ये पता नहीं है कि मैं करना क्या चाहता हूं, पर वो ये जरूर कहता मैं कुछ करूं। एक बीबी कल मुझे कहती, अमेरिका में वो रहती है, वो मुझे कहती कि महाराज जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को कहती अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या महाराज जी कितना सब कुछ लेके, मतलब ये दे कर, ये दरबार, हम दरबार की बात कर रहे थे, अमेरिका में हम दरबार लिया हमने, तो उस बच्ची, उसका फोन आया, बोली मेरे पास महाराज जी धन नहीं था, उसने सेवा दी अपनी, ऐसा नहीं है नहीं दिया, बट वो चाहती थी मैं और ज्यादा दूं, तो मुझे कहती महाराज जी मैं गरीब सेवक हूं आपकी, मैंने आपकी सेवा में मैंने बहुत सोचा था मैं बहुत कुछ दूंगी और भी देना चाहती हूं, आप मुझे अमीर बनाओ ताकि मैं सारे दरबार आपके लिए खुद ही खरीद के आपको दे दूं। मैंने उसकी बात सुनी, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम अमीर बनना चाहती हो? बोली हाँ। तो मैंने एक अमीर औरत की उसको मिसाल दी, वहीं रहती है वो अमेरिका में, तो उसके पास बड़ा पैसा है। तो मुझे उसी ने कहा कि महाराज जी उसके पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत धनवान है वो। मैंने कहा उसके पास पैसा है पर उसके पास दिल नहीं है। क्या नहीं है? और तेरे पास पैसा नहीं है तेरे पास, अब बता तुझे क्या चाहिए दोनों में से? एक कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे, जैसे भाव हो जाता है कि ये कर दूं मैं वो, हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि हम अपने आप को खुश करें, मैं खुद को खुश कर रहा हूं, कभी मैंने ये सोचा है कि दूसरे मेरे से खुश हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी कभी सोचिएगा कि आपके आस पड़ोस वाले आपसे खुश हैं, ये संगत आपसे खुश है कि नहीं खुश, ये भी सोच लीजिए। होना तो ये चाहिए

0: के अंदर इतनी जागी हुई है, ये आपके चलने के भाव से ही पहचान जाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, और उसी से पकड़ लेते हैं आपकी प्रक्रिया को, आपके आभा मंडल को, आपके विचारों को, और तुरंत वैसे ही आपके साथ वातावरण करना शुरू कर देते हैं। पेड़ आपसे मुरझा जाते हैं, पेड़ आपसे खिल जाते हैं। आप ये भी कभी सोचिए, पेड़ पौधे भी आपसे खुश हैं कि नहीं है? कभी सोचा? हाँ, कहां सोचेंगे, इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत क्या है, आपको पड़ी भी नहीं हुई। बोले कौन सोचता है, पेड़ पौधों को कौन देखता है? ये पेड़ पौधे हैं जो आपको हवा देते हैं। अगर ये हवा देना बंद कर दें, आपको सांस देना बंद कर दें, दमे की शिकायत तभी होती है, सांस लेने की मुश्किल तभी होती है। सांस आ रहा है पर सांस लिया नहीं जा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। ये कारण ही है कि पेड़ पौधों ने मुंह मोड़ रखा है। सोचिएगा घर जाकर आराम से, कुत्ते घोड़े गधे ये भी आपसे खुश हैं कि नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। जानवर भी खुश हैं कि नहीं है, ये भी आपको पता रखना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये रहती है हम लोगों को कि हम अपनी खुशियां ढूंढते हैं और अपनी भी नहीं, अपनी का भी एक सिस्टम है। आप मानो या ना मानो, हमारे अंदर बहुत कुछ गलत मलत चलता रहता है, बहुत कुछ जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं है। इसी को मन कहते हैं। और मन के मनन में, मन के मनन, मन की सोच में पता नहीं क्या कुछ है, विचारों में, मनन में, चिंतन में, अरे हरा बड़ा है। कैसे करेंगे इससे छुटकारा? तो इसके छुटकारा होता है जब गुरु मिलते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण होता है। समर्पण कैसे? शरणाई शरणागत, झुक गए तुम्हारे आगे प्रभु, तुम्हारे हो गए बस। थोड़ा सा सीखिए।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, लेकिन आज एक खास प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर लेकर आए आपके बीच में और पुरानी यादों को ताजा करेंगे, उन यादों को ताजा करेंगे जब हम लोग देखा करते थे, जब हमारी बुनियादें बुनियाद यानी कि परिवार से जुड़ा करती थी। बुनियाद सीरियल का मैं जिक्र कर रहा हूं मैं हम लोग का, और उस अभिनेता का जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर खुशियां तमाम आ जाती। जी हाँ, मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका नाम बहुत ही खूबसूरत है, अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: धन्यवाद, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर शारदा यूनिवर्सिटी और आपके स्टूडियो में, और सुनो शारदा 90.8 FM। मैंने सुना है कि बहुत बड़ा अच्छा आपका एक विकसित समुदाय चैनल है
1: जी।
0: 16 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, काश ये मेरे घर सरता विहार तक भी आ सकता
1: जी,
0: लेकिन सुना उसके लिए भी आपने एक ऐप निकाल दी है।
1: क्या बात,
0: तो अच्छा है कि एक कम्युनिटी रेडियो, जिसकी बहुत सख्त जरूरत भी है, क्योंकि देश दुनिया की खबरें तो टेलीविजन दे ही देता है, लेकिन समुदाय की जो न्यूज़ है, जो उसके अपने अपने रोज़मर्रे के काम है, उसमें आप इतना अग्रणीय होकर काम कर रहे हैं। गगन जी, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ।
1: देखिए दोस्तों, ये एक बात है, एक सुलझा हुआ इंसान ही कर सकता है, सुलझा हुआ एक कलाकार ही कर सकता है। थोड़ी ही बातें हमारी ऑफेयर हुई और सर ने उन बातों को एक अच्छी तरीके से पिरो कर हमारे सामने रख दिया। मैं आपको सर के बारे में और बताना चाहूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑनली ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और स्टूडियो में मेरे आज साथ ही खास मेहमान हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है अभिनव चतुर्वेदी। दूरदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन से हमारी दूर दूर तक की यादें जुड़ी हुई हैं। और वो दर्शन कराता था देश का, संस्कृति का, हमारी बुनियाद का। बुनियाद धारावाहिक को हम कैसे भूल सकते हैं, जो एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित था। और के अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और फ्लैशबैक में मैं अगर जाऊं तो थिएटर से शुरुआत रही, और शुरुआत रही जब दौर गुजर रहा था एक आप अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अभिनेता के साथ। तो सर वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मैं उस दौर में जाना चाहूंगा जब आप क्रिकेट खेला करते थे, राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी आपने पदार्पण किया, फिर इस तरफ आना कैसे हुआ अभिनय की दुनिया में?
0: गगन जी, मेरे पिताजी मॉडर्न स्कूल बारखंबा रोड में पढ़ाते थे और बहुत ही मायनाज, बहुत ही बड़ा नाम था उनका क्रिकेट कॉमेंट्री जगत में, अभय चतुर्वेदी। तो जैसे घर में परवरिश होती है तो वो हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे, नेशनल खेले थे। मैं भी हॉकी बहुत नेचुरली खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि कीर्ति आजाद हमारे स्कूल में थे
1: जी।
0: और वो जूनियर टीम में ही उन्होंने करीब एक ही मैच में डबल सेंचुरी लगा दी थी। तो कीर्ति भैया हो गए, भुवनेश चड्डा हो गए, दीपक चड्डा हो गए, अमिताभ कांत जो हमारे G20 के शेरपा हैं, वो भी क्रिकेट खेलते थे
1: जी जी
0: मॉडर्न स्कूल में। तो इन सब सीनियर्स को देख देख के हमने भी सिक्स क्लास में क्रिकेट लेनी शुरू कर दी। केसी शुक्ला जी हमारे कोच थे और साथ साथ में राजू सेठी, भास्कर पिल्ले ये भी आ गए थे स्कूल में, अतुल मारवा मेरे कैप्टन थे
1: जी।
0: तो फिर हमारे मैचेस होते थे सेंट कोलंबस स्कूल और बाल भारती एफओ स्कूल से, और बाल भारती एफओ स्कूल में सिक्स क्लास में मैं और मनिंदर सिंह जो दिल्ली इंडिया के फाइनली खेले लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो खेलते थे। साथ साथ में हमारे जब इंटर जोन मैचेस होते थे दिल्ली के जितने खिलाड़ी थे, मनोज प्रभाकर, हम लोग सब खेलते थे। तो अच्छी क्रिकेट होती थी और हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे सिक्स फार्म से।
1: nice.
0: तो संदीप गोयल वहाँ पर खेलते थे। साथ साथ में जो इंटर जोन मैचेस होते थे जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के, तो कुछ बिहार ट्रॉफी में मेरा सिलेक्शन हुआ 11th स्टैंडर्ड में। मेरा पहला नेशनल्स था, और पहला नेशनल्स जो सीके नायडू अंडर ट्रॉफी में हुआ, तो गांधीनगर में सबसे पहला मैच हमारा हुआ संजय मांजरेकर के अगेंस्ट। और मेरी बॉलिंग एनालिसिस थी कोई 19 ओवर 12 मेडन, कोई 22 रन और विकेट लेस, लेकिन वो संजय मांजरेकर के साथ मेरी जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, संजय से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर मनिंदर थे ही साथ साथ में। फिर मैं कुछ बिहार नेक्स्ट ईयर दिल्ली के लिए भी खेला अंडर 19, और उसी साल मुझे कैप्टन उस मैच में सेकंड ईयर में चेतन शर्मा वाज प्लेइंग फॉर हरियाणा। तो हमारे मैचेस जो जोनल्स के होते थे, चेतन शर्मा वेरी वेरी क्विक बॉलर और इंडिया को नॉक कर रहे थे। फिर अंडर 19 12th स्टैंडर्ड में आई वाज मेड कैप्टन दिल्ली स्टेट अंडर 19 इन गुवाहाटी, जहाँ हमने पिछले रनिंग चैंपियंस गुजरात को 5.5 दिन में इनिंग्स डिफीट करके भारत के भेज दिया
1: जी।
0: और असम को भी यही किया। फाइनल में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश से हुई, जहाँ विशाल भारद्वाज दी विशाल
1: बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने खेला।
0: बंटी यूज्ड टू प्ले मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड लेग स्पिनर, तो विशाल भारद्वाज जिन्होंने माचिस बनाई है, जोगी बिजली का मंडोला बनाया है, हैदर बनाई है। विशाल और मैं 12वीं साल क्लास से बंटी को मैं तब से जानता हूँ। और फिर जाके फिर इंडिया ने 19 में मेरा नाम आ गया, लेकिन मेरे फादर ने मुझे जाने नहीं दिया बिकॉज आई हैड माय बोर्ड एग्जाम्स। और फिर मैं अंडर 22 खेला दिल्ली के लिए, जहाँ मनोज प्रभाकर हम सब साथ क्रिकेट खेलते थे, और नवजोत सिंह सिद्धू मेरे कॉलेज में भी आए, दो तीन दिन मेरी क्लास में बैठे हिस्ट्री ऑनर्स में सेंट स्टीफन्स कॉलेज से, वहाँ भी अच्छी क्रिकेट खेली साथ में। और फिर अंडर 22 और 5 रणजी ट्रॉफी कैंप्स मैंने किशन सिंह बेदी जी के साथ अटेंड किए।
1: लवली।
0: तो वो क्रिकेट मैंने खेली डिस्पाइट माय फादर, मतलब मेरे फादर कुछ बोलते नहीं थे कभी किसी को सिलेक्शन में। वहाँ तक जाना चेतन चौहान, मनिंदर सिंह, मनोज प्रभाकर, चेतन चौहान, रमन लामा, कीर्ति आजाद, मदन लाल जो 83 की कप की, सुनील वॉल्सन, इन सब के साथ मुझे क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला।
2: बहुत अच्छा।
0: तो फिर यूनिवर्सिटीज के मैचेस खेले, उसके बाद फिर क्रिकेट का भूत तो अभी तक नहीं उतरता
2: जी।
0: तो अभी भी हमारी वेटरन्स क्रिकेट इंटरनेशनल करके संजीव सेठ, उसके नॉर्थ के हेड हैं, अभी हम 50 प्लस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।
2: हाँ।
0: और अभी मैं डीडी स्पोर्ट्स में एंकरिंग भी कर रहा हूँ। और तो क्रिकेट से मेरा अभी तक संबंध है, रहा है। भारत की जो विमेंस टीम ने जो
2: वर्ल्ड कप
0: जीता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत अच्छा है कि विमेंस टीम एक इंस्पायर करेगी और जनरेशन को भी, क्योंकि जिस बीड़े को जूलियन गोस्वामी या अंजुम चोपड़ा या मिताली राज ने उठाया था, वो इस टीम ने थ्रू
2: करके दिखाया,
0: हरमनप्रीत कौर ने उनकी टीम ने करके दिखाया है। बहुत बड़ी बात होती है कि मुसलसल आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यू नो कॉन्स्टेंट प्रहार कर रहे हैं कि भाई हमें जीतना है, और इस बार उन्होंने करके दिखाया है। तो भारत उनको बहुत बधाई देता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिसनर्स, मुझे लगता है कि सर अगर अभिनय की दुनिया में नहीं होते, जिस तरीके से क्रिकेट में नाम कमाए और आगे जाकर और नाम कमाते और देश के लिए खेलते, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है और उसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाती है। सर से मैं ये जानूंगा जरूर कि किस कदर ये लाइन चेंज हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, और अभिनय की दुनिया में आना कितना आसान है, क्या टफ है। स्टूडेंट्स के लिए वो क्या एक संदेश आखिर में देना चाहेंगे, आखिर मैं आखिर की बात कर रहा हूँ अभी नहीं। तो वक्त है हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनको देखकर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम खुश होते थे, हम मनोरंजन की दुनिया में चले जाया करते थे, उनको देखकर हम बड़े हुए। हमें भी लगता था कि हमें भी एक ऐसा ही एक्टर बनना है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं हमें लगता है कि निश्चित तौर पर जब हम क्रिकेट खेला करते थे या खेलेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बुनियाद और हम लोग के बड़े खूबसूरत एक्टर बाज सौदागर बुनियाद। इस तरह से तमाम यूं कहें कि एक लंबा अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, ये जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, ये जो चेंज आया जब आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे उसके बाद आपने स्विच किया अभिनय की दुनिया में, तो कितना आसान था या कितना टफ था?
0: देखिए, मैंने अभिनय शुरू किया 5 वर्ष की उम्र से, जब मैं ओम शिवपुर जी जो हमारे मॉडल स्कूल कैंपस में रहते थे
1: जी,
0: मेरे फादर भी वहीं रहते थे, तो हम लोग सब एक ही कैंपस में रहते थे। तो थिएटर तो मैंने बहुत जल्दी उम्र में शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि वो क्रिकेट भी शुरू हो गई, तब एक वन सिंगल व्हीलर से वो टू व्हीलर बन गया। अब गाड़ी और समझ में नहीं आती थी कैसे चलानी, तो क्रिकेट अच्छा खेलना शुरू किया। पतला सुखड़ा सा मैं होता था, मेरे को ऑफ स्पिन फेंकनी आती थी और बैटिंग तो मेरी थी और फील्डर में बहुत अच्छा था।
1: आप अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आंखें बहुत खूबसूरत हैं सर।
0: जब मार खाते हैं तो अपने आप अच्छे बन ही जाते हैं। मार खा खा के इंसान, कहते एक शेर है उर्दू का
1: जी,
0: कि सुर्ख रू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद।
1: क्या बात।
0: तो जब तक आप पिसेंगे नहीं, जब तक इफ यू डोंट गो टू द ग्राइंड सेशन, उसमें मैं ये कह रहा था कि जब तक आप ग्राइंड के थ्रू नहीं जाते,
1: क्या बात,
0: तब तक आप निखर के नहीं आते। और उसके लिए ग्राफ का ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। पर मेरे गुरु इतने अच्छे थे कि दीनानाथ जी ऑल इंडिया रेडियो में, सत्यन शरद, मुद्रा राक्षस, नाटकों में करने गया ओम शिवपुरी जी, सुधा दीदी, सुधा आंटी, विवेकानंद साहब, बीएम शाह, विश्व मोहन बडोला, मेरी अपनी स्कूल की टीचर मिसेज उमा सहाय,
1: क्या बात,
0: और बनवारी तनेजा, रवि बासवानी, फिर जब मैं डायरेक्शन में मतलब एक्टिंग करने गया तो रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, वो मेरे डायरेक्टर, सुभाष घई, सुभाष घई साहब, राहुल रवेल जी जिनके साथ मैंने 2 फिल्में की, राकेश कुमार जिनके साथ मैंने सूर्यवंशी की, और वो डायरेक्टर थे 11 फिल्म के अमिताभ बच्चन जी के साथ,
1: बहुत बड़ा था,
0: बाज गोविंदा जिसमें एच सुभाष डायरेक्टर थे। तो वो सारा का सारा जो गुरुओं के थप्पड़ पड़ने, मतलब शिक्षा के थप्पड़ पड़ने, उसने मुझे हमेशा, कहीं मैं गलत हुआ तो सवाल पूछ लेता था भी क्या प्रॉब्लम है, और वो वैसे ही थे कि आज तो बताना है, डिटेल में समझाना है। तो वो एक अच्छे, आई वाज लकी कि मुझे अच्छे गुरुओं ने उठाया भी, और जब मैं फॉल किया, मेरी जब पहली फिल्म फ्लॉप हुई पर्वत के उस पार, तो उसने मुझे संभाला भी।
1: क्या बात है,
0: कि डोंट गिव अप, वी आर ऑल देयर फॉर यू। और मेरी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद रमेश जी ने मुझे भ्रष्टाचार फिल्म दी रेखा जी, मिथुन जी के साथ और रजनीकांत सर के साथ काम करने के लिए, और राहुल जी ने मुझे दी योद्धा संजय दत्त और सनी देओल के साथ। दोनों फिल्में फिर मेरी अच्छी हुई और ठीक ठाक चलता गया। फिर जब सौदागर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मुझे, मेरे फादर को कैंसर हो गया तो मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है तो मेरी शादी हो गई, और फिर मैंने अपनी दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अब मैं जब वापस शिफ्ट किया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज मेरे पास कोई काम नहीं था
1: जी,
0: और सब यही सोच के गए थे भैया यहाँ से तो हीरो बन के जाएंगे
1: जी जी,
0: और लौटे जीरो बन के, तो सब यही कहते थे कि भाई पता नहीं आदमी कैसे करेगा क्या करेगा
1: जी।
0: सो आई सेट अप माय ओन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी व्हिच इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग उसमें फिल्में बनाते हैं, कॉर्पोरेट जिंगल्स करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते हैं। फिर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, मैं एंकरिंग में चला गया, शोज को एंकर करने शुरू किया, और मुझे अवसर मिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए, कलाम साहब का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी मैंने काम किया, जगजीत सिंह के साथ मैंने 32 साल काम किया,
1: बहुत बड़ा,
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने 10 से ज्यादा कम इवेंट्स किए होंगे एज एन एमसी एन एन एंकर। अब फिर मैं रेडियो मिर्ची पहुंच गया, तो जैसे एक लक्कड़ नदी में घूमता घामता पहुंच जाता है वैसे मैं भी पहुंच गया रेडियो मिर्ची। सो आई टू डू अ शो कॉल लल्लन भैया ऑन इन टू वॉइसेस ऑन अ संडे स्पेशल। उसमें वो लल्लन जो है वो चांदनी चौक का कैरेक्टर है। कहाँ जा रही है, क्या कर रहा
2: है,
0: क्या बोल दियो, चटक मारे इसको। और अभिनव चतुर्वेदी से वो बात करता था।
1: मतलब यू समझ लीजिए कि आप इस चीज के जनक हैं। आपको देख के रौनक ने शायद ऐसा किया होगा, या आपको देख के हम लोग कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। न्यू जनरेशन भी कहीं ना कहीं एक ड्यूअल वॉइस के साथ काम कर रही है, तो हम तो भीष्म पिता हमें आपको कहेंगे।
0: देखिए मैं अपने आप को और भी सिंपल कर लूं, इसकी उत्पत्ति कहां से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे यहाँ भारत में टेलीविजन पे कोई पेयर्ड कॉमेडी नहीं रही। जैसे बाहर आप देखें तो लॉरेल हार्डी या बड एबट लो कोस्टेलो की जो क्लासिक सीरीज होती है, भारत में अभी तक टेलीविजन में कोई डबल कास्टिंग नहीं हुई। जैसे सत्यन हैरी में बना रहा हूँ, तो हम लोग जो पहले दिन ऑडिशन करने पहुंचे रेडियो मिर्ची, तो इंग्लिश में कर दिया, ओके हो गया, हिंदी में कर दिया, ओके। मैं बैठा हुआ था गर्मी का मौसम अपनी गाड़ी के अंदर
1: जी।
0: बहुत ही पक गया था, मैंने कहा यार अभी तक सर यार ये चांदनी चौक का दिल्ली का चैनल है, जरा सोचा दिमाग लगाया दिल्ली के चैनल में क्या करना चाहिए।
1: हाँ।
0: तो दिल्ली की असली पहचान पुरानी दिल्ली है।
1: हाँ।
0: पुरानी दिल्ली से कैरेक्टर लिया लल्लन, वो हैप्पी गो लकी बंदा है, वो कुछ भी कपड़े पहन लेता है, किसी की शर्ट उतार के पहन लेता है बड़ा। और वो हाँ। वो जो जहाँ रहता है उसका हमने क्या किया, उसकी गली का नाम दिया 98.3। उसके घर का नाम था 98.3। बोले उससे पूछता भाई तुम्हारे तुम कहाँ रहते हो, बोला 98.3। मतलब क्या है सर, कोई एड्रेस होता है 98, एड्रेस होता है 99, 98.3 कदम हुई तो फ्रीक्वेंसी हमारी। तो यू नो वो एक बड़ा हैप्पी प्रोग्राम था और उसको मैं ही लिखता था
1: जी।
0: तो हमारे एक मित्र हैं आप पार्टी वाले पुराने आशुतोष, तो आशुतोष के साथ में क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो आशुतोष भैया ने मुझे कहा, क्राई का मैच था, ये ललन और अभिनव आप ही करते हो, और जिस तरह से उन्होंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं ललन भी करता हूँ, तो कहते क्या जरूरत है अभिनव चतुर्वेदी को किसी एक घटिया आदमी से 20 साल काम करने के बाद गाली खाने की ऑन एयर। सो ही क्वाइट could relate to that part, कि ये वही कैरेक्टर है। और वो 3 साल प्रोग्राम चला, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मेरे लिए सबसे थेरेपी का भी उसने काम किया, कि एक तो व्यंग कॉमेडी और साथ साथ में सोशल इश्यूज को उठाना इंफॉर्मेशन के टूल पर। और इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक हमारे यहाँ एक वो जो चीज एल से होती थी उसको ओन कर लेता था, कि मतलब हमारी है। जितनी गाड़ियां देख रहे हो ना रोड पे चलती हैं, जिस जिसके पीछे एल लिखा रहा था ना, हमारी लल्लन मोटर स्कूल की है। अब आप सोचिए कहीं से किसी का लेना देना नहीं, और ये लड़कियां ना बड़ी टेढ़ी चलती हैं, राइट का निशाना करके लेफ्ट पे चली जाती हैं, जरा धीरे चलियो। तो क्या होता है कि वो सारा का सारा जो रोड पे होता था
1: वो आप कैच कर,
0: अरे कहीं मिल जाए तो बता दीजिए हमारी मोटर स्कूल के, हाँ ठोक दो तो ठोक दो, पर जान बची रहनी चाहिए।
1: क्या बात है,
0: गाड़ी तेरे पर आ जाएगी, जान जाए पर बचन न जाएगी। वो दैट काइंड ऑफ सोशल एंगल से, और वो 3 साल बहुत हैप्पी स्कूल था। एक यहाँ तक कि एक पिक्चर में अभिषेक बच्चन का नाम था लल्लन, तो वो अभिनव चतुर्वेदी को गोली देता है, कहता आज मैं एयरपोर्ट पर ना मुझे

0: और ब्रांड को बट्टा नहीं लगना चाहिए, फिल्म सुपर हिट होनी चाहिए, नाम हमारा नाम इन्वॉल्व है। सी यू अ मैन हु वाज नॉट एग्जिस्टिंग, और मुझसे लोग आगे कहते थे लल्लन से मिलना है,
1: ओह लवली,
0: जबकि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, मैं ही लल्लन था, मैं ही अभिनव था,
1: जिसमें एक जान।
0: तो वो एक आर्ट है जो विल बाहर वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, वेंट्रोकुलिज्म के नाम से, जिसमें आप अपनी आवाज को थ्रो कर सकते हैं,
1: बहुत
0: उसका सहारा लेते हुए फिर वो शो 3 साल चला, एंड आई रियली एंजॉयड इट। मैं तो खुद हंसता था वो शो लिख लिख के रात को, और मेरे घर वाले सोचते थे आदमी पागल हो गया।
1: नाइस सर, तो लिसनर्स ये बात बहुत ज्यादा खिंच गई, यहां पर एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, सर पानी पी लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरी यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत।
2: उषा, मेरे पास भी एक छोटा सा करेक्टर होता है, ये बहादुरी जो कि नेपाल से आया।
1: ये सर एक छोटा सा करेक्टर मेरे पास होता है, जो मैंने कहा ना कि हम आप लोग को देखकर सीखकर बड़े हुए हैं और यहाँ कतई की भाषा सीख गया, यानी कि दिल्ली NCR की भाषा सीख गया। जो आपने ललन का जिक्र किया, मुझे सैयद जाफरी साहब का वो वाक्य याद आ रहा है कि एक फिल्म आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया वो भी वहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, चांदनी चौक पहुंचे, उस करेक्टर को उन्होंने उठाया, क्या कर रही है, कैसे जा रही है वगैरह वगैरह, उस तरीके से वो फिल्म में लेकर चले गए। ऐसी जब मैं कुछ करने जा रहा था तो मैं मथुरा के करेक्टर को उठाना चाह रहा था या फिर कुछ और खास उठाना चाह रहा था, मैंने बहादुर को पिक किया जो कि नेपाल से आता है और यहाँ की भाषा सीखता है, मिक्स होता चला जाता है। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे स्टूडियो में अभिनव चतुर्वेदी जी, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे एंकर हैं, अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला है, MC हैं और एंकरिंग की यूँ समझिए कि हमें बारीकियाँ सर से सीखनी चाहिए। जब मेरी मुलाकात सर से हुई फेस टू फेस, मैं कहने वाला था लेकिन अब मैं कह देता हूँ, सर माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप आवाज़ के धनी भी हैं, आप हरफन मौला हैं, कैसे आवाज़ को मेंटेन करते हैं और कैसे हमें आवाज़ का ख्याल रखना चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहला आवाज़ को बचा के रखना चाहिए पानी की तरह
1: जी,
0: आवाज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको सब खाना चाहिए,
1: सब खाना चाहिए,
0: सब खाना चाहिए।
1: लोग कहते हैं खटाई नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना,
0: जैसा है जितना आप गले को अगर आप तंग नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं आपको मकसद बता देता हूँ
1: जी,
0: एग्जांपल के सहित, इसका प्रमाण भी है मेरे
1: जी,
0: पास।
1: जी जी,
0: भारत में जितने शास्त्रीय गायक हुए हैं क्लासिकल के, वो सब अपनी सुपारी अपने पास रखते हैं और लौंग और सुपारी खाते हैं।
1: लौंग सुपारी,
0: सुपारी की तासीर बेसिकली क्या है, वो खरज पैदा करती है, खरज पैदा करती है, जो रेशे सुपारी के वोकल कॉर्ड्स को खोलते हैं, उसकी सारी हस्क जो है वो सुपारी खाने से आती है। सुपारी खाने से,
1: ये कच्ची भीगी कैसे?
0: कच्ची सूखी सुपारी,
1: सूखी सुपारी,
0: गीली भी आप खा सकते हैं लेकिन सूखी सुपारी, सुपारी इसके जितने वोकल कॉर्ड्स के रेशे हैं वो सब खोलती है।
1: अब आप ये बताएं कि क्या उसको चबाने से या उसका रस लेना?
0: कुछ भी करने से उसको फर्क नहीं पड़ता।
1: अच्छा।
0: लेकिन आप किसी के हाथ से सुपारी नहीं लेंगे, बिकॉज सुपारी में बहुत सारा काम होता है, कभी पान भी किसी से नहीं लिया
1: जी।
0: रोली मिला के उससे कुछ लोग टोटका कर देते हैं, आवाज चली जाती है। जितना आप अपने गले को उसको तोता बना के रखेंगे उतना तकलीफ करेगी, बिकॉज गले का ताल्लुक सीधा ईयर, नोट, नोज, थ्रोट। आपका वैसे भी नाक बंद होगी तो आपके गले पे असर पड़ेगा, बिकॉज दोस थ्री आर मेडिकली इंटरकनेक्टेड। एंड उसको आवाज को बनाना, ऑर्केस्ट्रेट करना, वो एक अलग चीज, क्योंकि हम फिर गायकी का भी प्रयोग करते हैं इसमें। हम लोग जब गाते हैं, जैसे मैं गाता हूँ तो मुझे गाने का शौक है
1: जी।
0: तो मेरी आवाज की टोनालिटी किस सिंगर के साथ जा सकती है, मैं हाई पिच पे नहीं गा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दो गजल का एक शेर सुना देता हूँ
1: जी, प्लीज।

0: क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह।
1: तो क्या है कि आपको अगर म्यूजिक की भी ग्रामर है तो उसके उतार चढ़ाव, उसका क्रिसेंडो, उसका नीचे उतरना, तो आप जब मंदिर सप्तक में गाएंगे नीचे करके तो अलग होगी, और फिर दूसरी जैसे वो पंकज जी की कोई

0: बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग। आज हमारा दिन बन गया दिन।
1: एक उस्ताद के बीच में हम बैठे हैं और एक अनुभव के साथ आप आते हैं और बहुत बड़ा अनुभव है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। और खासकर जहां स्टूडियो में साथ भी तीन इंटर्न जुड़े हुए हैं, वो भी ये साक्षात्कार जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेकर जा पाएंगे। अभिनव सर, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बारीकी से आपने अपनी चीजें बताई, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हेल्दी रहें।
2: बहुत बहुत अनेक आभार आप सभी का। और मशीन्स तो मशीन्स हैं, इनसे काम लेना भी हमें आता है। भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हम इन्हें मशीन बनाई और हम इनसे काम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, आपने बुलाया एंड छोटी सी मुलाकात की। इसी तरह सुनो शारदा, सुनते रहिए 90.4।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: तथा 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम नाम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
1: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
0: तो नहीं है आपके आहार में दम,
1: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी।

अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम से। मैं शशि कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, और इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में। और आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में, जहां पर हम बैठे हैं दीपक कौशिक जी के सामने। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ सेवाएं वो शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कौशिक जी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 एफएम पर स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं सभी आपके श्रोतागण है सभी का धन्यवाद करता हूँ।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो शारदा हॉस्पिटल का डॉट सेंटर है, यहाँ पर आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या क्या कार्य आप यहाँ पर देखते हैं, और किस तरह से जो डॉट सेंटर है वो लोगों की सेवा कर रहा है।
1: सर, मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं बेसिकली यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, और शारदा हम विजिट के लिए यहाँ आते हैं, डॉट सेंटर को रन कर रहे हैं, क्योंकि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के यहाँ डॉट सेंटर चलता है। विगत 2011 से हम लोग यहाँ पे हैं, जो डॉट सेंटर को हम लोग चला रहे हैं, और इन 2011 से हमने कई हजार मरीज जो टीबी से ग्रसित थे उनको हमने ठीक किया है। और देखा जाए तो टीबी एक जो पहली सदी में एक महामारी के रूप में जानी जाती थी, लोग उसको लाइलाज बीमारी के रूप में बताते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉट्स आया, पहले हमने आरएनटीसीपी से स्टार्ट की, आरएनटीसीपी के बाद में हमने इसको अब एनटीपी में ला के आए, अब एलिमिनेट की तरफ हमने इसको प्रोग्राम को चलाया हुआ है। तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य विजन रखा है कि हमें अपने देश से टीवी को जड़ से भगाना है, टीवी फ्री इंडिया करना है। तो इसी मुहिम में हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं,
0: और इसी उद्देश्य को लेकर के टीवी कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन को सफल बनाने में आप और आपका जो स्टाफ है और आपका जो स्वास्थ्य विभाग है, किस तरह से योगदान कर रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए।
1: हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि एक विश्व से टीवी को जड़ से समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा था 2030, एलिमिनेट करना है, टीवी फ्री करना है इंडिया को, बट थोड़ा सा अभी ये महामारी एक कोविड के रूप में हमारे पास आई, जिसने हमारे 3 साल इसमें हमारे खराब हो गए, लेकिन फिर भी हमने अब महामारी से अपने आप को उभरते हुए इस टीवी प्रोग्राम पे हमने अपना फोकस रखा हुआ है कि हम आज भी अपने जो माननीय मोदी जी का विजन है 2025 तक टीवी फ्री करने का, तो उसको हम सुचारू रूप से सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे भी। और रही बात हमारे योगदान की, तो देखिए सर, हम तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं जी, तो हमारा तो मेनली उद्देश्य ही है कि टीवी को जड़ से समाप्त करना। तो सभी हमारी पूरी टीम, आशा, आंगनबाड़ी और आपका जितने भी MOs हैं, CHOs हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और भी जो भी हेल्थ से हमारे रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे ही हम इसको बीमारी को जल्द से जल्द अपने टीवी इंडिया से बाहर कर सके।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने आशाओं की बात की, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनकी बात की, तो ये किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे रही हैं?
1: सर, इसमें अभी हमको ना 100 दिवसीय टीवी सघन रोगी खोज अभियान हमने सरकार ने चलाया हुआ है। उस 100 दिवसीय में क्या है कि हम 1 जनवरी से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने प्रदेश में, और उसको हम 24 मार्च तक हम इसको चलाएंगे। तो इस 24 मार्च तक हमको वेनरेबल जो पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि जब हम स्क्रीन करेंगे तो उसमें हमें टीबी के पेशेंट मिलेंगे। तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, जो हमारे CHOs हैं, वो घर घर जा रहे हैं, पेशेंटों के उनके कॉन्टेक्ट से मिल रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर उनमें कहीं ना कहीं ये 5 लक्षण आपको दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से लगातार खांसी किसी अगर हमें स्क्रीनिंग चिन्हित किए हुए व्यक्ति में दिखाई देते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, रात पर कमर पर पसीने का ज्यादा आना हो, वजन अचानक उसका गिर गया हो, वजन बहुत ज्यादा कम हो गया हो, और लो ग्रेड फीवर, जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे उसको बुखार और अधिक होता चला जाता है, उसको हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। अगर ऐसे और किसी के बलगम में खून का आ रहा हो, किसी की बॉडी में कहीं कोई गांठ दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं। और अभी 100 दिवसीय सघन उसमें क्या कह रहे, वेनरेबल पॉपुलेशन में हमने 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी हमने क्या कह रहे वेनरेबल पॉपुलेशन में चिन्हित किया है। स्मोकिंग करने वाले, एल्कोहल कंज्यूम करने वाले, वो भी व्यक्ति हमारी सस्पेक्ट वाली श्रेणी में आते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 18.5 से कम हो, उस व्यक्ति को भी हम क्या कह रहे इसमें वेनरेबल, उसमें हम क्या चिन्हित करते हैं। कुछ आपका डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटीज जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक जननी होती है हर बीमारी की। तो हमने उस डायबिटीज पेशेंट को भी हमने एक चिन्हित करा है अपनी इस स्क्रीनिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद में हम उनका क्या कह रहे हैं, उचित माध्यम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो पीपीपी मॉडल पे, तो उनमें हम उनकी जांचें करवा रहे हैं स्क्रीनिंग करने के बाद। तो अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो देन उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने उनके लक्षणों के बारे में बताया, और जो हमारी आशाएं हैं या अपने आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं उनका नाम लिया, और भी हमारे जो CHO हैं, ये तो अपनी भूमिका बखूबी निभाई रहे हैं, लेकिन हमारे जो आम इंसान है, कहते ना कोई भी अभियान जब तक सफल नहीं होता जब तक हर इंसान उसमें अपना योगदान ना दे, तो हमारा जो आम इंसान है वो किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे सकता है ताकि हम टीबी मुक्त भारत बना सके।
1: सर जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि 5-6 लक्षण मेन लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से लगातार ज्यादा खांसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बुखार ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या कह रहे लगातार उसका वजन कम होता जा रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, या रात में कमर पर ज्यादा पसीने आ रहे हों, या किसी को गांठें दिखाई दे रही हों बॉडी पे, तो ऐसा व्यक्ति, आम लोग भी हम ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग वातावरण में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर हम उनको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि पड़ोस में कोई खांस रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है, तो हम उसको एक सलाह दे सकते हैं कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जहां फ्री में आपकी जांचें होंगी। अगर उसमें टीबी आपको पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको फ्री में ही उसका इलाज भी मिलेगा, और साथ में सरकार जो है इलाज के साथ में निक्षय पोषण योजना के तहत उसको 3,000 रुपये, अभी पहले क्या था 500 रुपये पर मंथ था, लेकिन सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया, उसको 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। तो जो ड्यूरिंग है आपका इलाज के दौरान 6 मंथ का इलाज होता है, तो उसमें उसको पेशेंट को 6,000 रुपये भी मिलते हैं।
0: तो सर ये तो निक्षय पोषण जो पोर्टल है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, टेस्ट के जरिए ये पुष्टि भी हो जाती है कि भाई आपको टीबी है, तो उस दौरान जरूरत पड़ती है उसको अच्छे पोषण की, तो क्या क्या उसको खाना चाहिए उसके बारे में भी आप सही जानना चाहेंगे।
1: जी जी, देखिए टीबी का जो पेशेंट होता है अल्टीमेटली ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी रोग उसको बड़ी जल्दी घेर लेता है। तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट्स का लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मांसाहारी हैं तो मांस से ही आपको क्या कह रहे प्रोटीन मिलेगा। दाल है हमारी, अंकुरित करके दालें खाइए, चने खाइए, आप पनीर ले सकते हैं, और जो भी क्या कह रहे प्रोटीन जिसमें दूध आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, तो जो भी प्रोटीन फुल क्या कह रहे आपकी डाइट में उसको ज्यादा से ज्यादा शुमार करिए। तो जब आप प्रोटीन युक्त अगर डाइट लेंगे तो पेशेंट का इम्यून जो पावर है वो स्ट्रांग होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपने उसमें आहार में वो सम्मिलित करें, जिससे कि इस बीमारी को जल्दी से वो भगा सके।
0: बहुत से टीबी के मरीज ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो आपने बताया कि प्रोटीन युक्त आहार उनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, घनी बस्तियां हैं, अब ऐसे में अगर उनको टीबी हो जाता है तो पोषण की बड़ी दिक्कत रहती है, कैसे एक तो मजदूरी मिली ना मिली, तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई ऐसी कोई योजना है या कोई ऐसे लोग हैं इस योजना से जुड़े हुए जो उनकी मदद कर पाए।
1: देखिए मलिन बस्तियां हमेशा हमारे प्रायोरिटी पे रही हैं और हम समय समय पर मलिन बस्तियों में जाके कैंप भी लगाते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी निःशुल्क जाँचें करवाते हैं। जाँच करवाने के बाद अगर टीबी रोगी पाया जाता है पॉजिटिव तो सरकार उनको निश्चय पोषण योजना, एक निश्चय पोषण योजना सरकार ने चला रखी है, उसके माध्यम से सरकार उनको 1,000 रुपये DBT के माध्यम से उनके डायरेक्ट बैंक में उनके खाते में वो 1,000 रुपये देती है, और वो जब तक इलाज उसका चलता है जब तक सरकार हर महीने प्रति उसमें क्या कह रहे उनको 1,000 रुपये देती है।
0: ये योजना इसके अंतर्गत जो निक्षय मित्र हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं वो भी इस अभियान में आगे आना चाहते हैं, सक्षम हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, दूसरों का भला चाहते हैं, तो किस तरह से इसमें अपना योगदान कर सकते।
1: सर जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कोई भी योजनाएं सरकारी योजनाएं जब तक फलीभूत नहीं हो सकती, जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती, जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी ना हो, तो ये निक्षय मित्र जो कॉन्सेप्ट है ये सरकार क्या कह रहे हैं आम लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो हमारे क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि हो, हमारे कोई अफसर हो, क्योंकि हमारे तो राज्यपाल जी ने इसका शुभारंभ किया था निक्षय मित्र बनाने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में जुड़े। निक्षय मित्र वो व्यक्ति हो सकता है जो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीबी रोगी को उस इलाज के दौरान उसकी हालचाल पूछे, उसको खान पीन की भी अगर वो व्यवस्था कर सकता है, एक निक्षय पोषण पोटली बोलते हैं उसको हम, तो वो निक्षय पोषण पोटली भी उसके इलाज के ड्यूरिंग उसको देता रहे। और सबसे बड़ी बात है उसका मोरल, जो उसको बार बार पूछ के उसका जो मोरल को हाई करता रहे कि भाई अगर बीमारी है आपको, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीच बीच में उसको बताता भी रहे, क्योंकि ये भी एक निक्षय मित्र की मैं समझता हूँ कि एक उसका दायित्व है ये टीबी की बीमारी स्प्रेड ना हो, तो टीबी के मरीजों को ये भी समझाए वो कि भाई आप हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखें, इधर उधर ना थूकें, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब ना खाए पिए, जिससे कि ये बीमारी अपना विकराल रूप ना ले सके।
0: कहने का मतलब यह है कि जो निक्षय मित्र हैं वो टीबी पेशेंट का हालचाल पूछे, उनका मनोबल भी उड़ाते रहे, साथ ही साथ उनको कुछ सावधानियां भी बताते रहे ताकि वो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा जाए। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति हमारी आपकी बात सुनकर के रेडियो के माध्यम से निक्षय मित्र बनना चाहता है तो कहां पर जाके संपर्क करें?
1: सर, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो वो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां भी डॉट सेंटर्स हैं, वो वहां जाके सिर्फ मिल सकता है हमसे, और एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर अपना उसको देना है। हम उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से उसको क्या कहते हैं अपने निक्षय उस पर रजिस्टर्ड कर देंगे और वो निक्षय मित्र के रूप में हमारा वर्किंग कर सकते
0: हैं। बिल्कुल, तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं अगर अपना योगदान इस अभियान में देना चाहते हैं तो जैसा सर ने बताया है उसके जरिए आप निक्षय मित्र बन के किसी का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और सर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास पेशेंट भी आते हैं और वो उन्होंने टीबी को हराया भी होगा, तो हम कुछ ऐसे जो टीबी चैंपियन है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहले बहुत परेशान थे लेकिन अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं आराम से, तो उनके बारे में कुछ बताइए।
1: जी बिल्कुल सर, क्योंकि बातें करें तो मैं 2004 से इस जॉब में हूँ और 2004 से ही मैं क्या कह रहा टीबी के पेशेंट देख रहा हूँ, और हजारों पेशेंटों को मैंने अपने सामने ठीक होते हुए देखा है। और एक टीबी का रोगी जब आता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो खटिया पे ही लेटा हुआ आता है, और जब वो अपना डॉट्स का पूरा इलाज लेता है तो वो एक स्वस्थ जीवन जीता है, और कुछ सावधानियों के साथ में। जैसे अभी अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कपड़ा है कोई आपकी शर्ट है और शर्ट पर एक ही शर्ट है, आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, तो करते क्या है कि शर्ट अगर कहीं फट गई तो उसमें क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अगर हम उसी सिलाई को सहेज के रखेंगे, यानी कि उसको हम अपनी शर्ट का ध्यान रखेंगे, तो वो जीवन पर्यंत आपकी शर्ट चलती रहेगी। तो ऐसी हमारे टीबी का मरीज है, टीबी का मरीज अगर अपने एक बार ग्रसित होने के बाद पूरा इलाज लेता है और अपने वो शरीर के लिए कुछ सावधानियां बरतता है तो वो अपना एक सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सकता है। और ऐसे बहुत हजारों मरीज हैं जो आज सामान्य जीवन जी रहे हैं, पहले टीबी से ग्रसित थे, आज वो सामान्य जीवन जीते हैं, और वही लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ के, क्योंकि जिन्होंने इस दर्द को झेला है वो जब ये दवाइयां खा के वो स्वस्थ हुए हैं, तो उन्होंने जो सामने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो उनको समझाते हैं वो लोग। तो यही लोग हमारे जो टीबी चैंपियन है सर, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार की योजना है टीबी फ्री इंडिया करने की, उसमें ये भी लोग हमारे बहुत बड़े मदद।
0: बिल्कुल सर, तो बहुत सारी बातें आज रेडियो के माध्यम से आपने हमें बताई, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और जो टीबी पेशेंट हैं हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल जागरूक रहेंगे। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अभी जो टीबी कैंपेन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो टीबी के जो भी मैंने अभी पूर्व में लक्षण बताए थे उन लक्षणों को सभी लोग जो हमारे श्रोता हैं वो सभी लोग इसको जान लें, और जानने के बाद अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सराउंडिंग में दिखाई देता है, रिश्तेदारी में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके क्या कहते हैं पड़ोस में हो, या कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति है, तो आप उसे चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को ये समझाएं कि भैया ये लाइलाज बीमारी नहीं है, आप इसके लिए पहले सरकारी जो केंद्र है डॉट सेंटर है उस पर आप जाइए, जाने के बाद वहाँ निशुल्क जांचें होती हैं। अगर आपको ये पॉजिटिव आ भी जाता है, टीबी रोग आ भी जाता है, तो आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इसमें पूर्णतः क्या कहते हैं आपको इलाज लेना है जितनी भी अवधि का वो डॉट सेंटर में बताते हैं। तो दो तरीके की हमारे यहाँ टीबी अभी मुख्यतः चल रही है, एक सिंपल टीबी और एक एमडीआर टीबी। उसमें क्या होता है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, तो कुछ ड्रग्स हैं जिससे वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसका भी कारण ये कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर पेशेंट रहा होता है, या कहीं ना कहीं वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो पहले से वो एमडीआर का पेशेंट था। तो यही है कि सभी लोग जागरूक बने, इन चीजों को देखें, और हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको भी जागरूक करें कि भैया समाज में आपको तो इलाज लेके ठीक होना ही है, लेकिन आपको दूसरे को भी बचाना है, दूसरे व्यक्ति को आपसे ग्रसित नहीं होना, ये चीजें आप थोड़ा सा वो जागरूकता सभी लोग फैलाएं। और जैसे कि आपने बताया ही है पूर्व में कि भाई आम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी तभी हम इस रोग को हरा पाएंगे। ऐसा कोई सरकारी तंत्र नहीं है कि वो स्वयं इसको हरा देगा। जब तक आम मानस घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, जब तक हम टीबी को नहीं हरा पाएंगे, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें।
0: बिल्कुल सर, जो भी इस अभियान से जुड़े हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो सूचना लोगों तक पहुंच रही है वो भी अपनी भागीदारी निभाएं तो हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। एक और चलते चलते बात सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो शारदा विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है सुनो शारदा 90.8 FM, जे भी जन जागरूकता फैला रहा है टीबी के लिए, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान में जो अब तक भूमिका रही है शारदा रेडियो स्टेशन की?
1: सर, शारदा रेडियो स्टेशन की जो भूमिका रही है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से क्या सभी आपके श्रोताओं और आप चैनल के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही जागरूकता प्रोग्राम आप चलाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस जागरूकता से बहुत से लोगों का जीवन बच सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको धन्यवाद पुनः देते हुए कि आप ऐसे जागरूकता अभियान टीवी है या और भी डिसीज को लेकर जो भी जागरूकता अभियान है वो हमेशा चलाते रहे।
0: बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे ही अभियान चलते रहेंगे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
4: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
5: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
4: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
5: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
4: है?
5: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 FM से मैं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, जिसका फोकस टीवी पर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि हमें देश को टीवी मुक्त करना है, तो इसी क्रम में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। बार बार रेडियो के जरिए आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचती हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि टीवी मुक्त भारत बनाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी क्रम में आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड HOD डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे टीबी के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे विचार श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, और हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो टीबी है आखिर ये है क्या, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं?
6: देखिए, इस सवाल का जवाब देना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यूं समझिए कि ये टीबी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी कोविड आया कुछ दिन में जो इवॉल्व हुआ, ये हजारों साल से चली आ रही है। पहले इसको एक आनुवंशिक बीमारी माना जाता था। रीजन ये था कि एक परिवार में अगर किसी एक सदस्य को हो गई तो ये हम जानते हैं कि एक से दूसरे में फैलने में देर नहीं लगती, और इलाज थानी इलाज की क्वेश्चन तो बाद में उठता है। पहले किसी को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है ना, तो लोग बोलते थे कि एक ही परिवार के सभी लोगों में तो ये आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन बाद में एक जो लैंडमार्क आया ट्यूबरक्लोसिस में, दैट वाज 1882, जब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया एक कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, ये एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये तो एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। इन्फेक्शियस प्रॉब्लम जो एक कीटाणु से होती है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चीज़ तो अब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो अभी सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, और उस बैक्टीरिया का नाम हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, और एक इंसान जिसके फेफड़े पहले से प्रभावित हैं, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वो हवा में रिलीज करता है, और उसी हवा को जब कोई दूसरा एक इंसान एक सांस के रूप में अंदर लेता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। मतलब इन्फेक्शन के चांसेस, ये हम ऐसे बोलते हैं कि टीबी होने के चांसेस, कि जितने लोगों के शरीर में बैक्टीरिया जाता है उन सभी को टीबी नहीं होती। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो इम्यूनिटी उन बैक्टीरियाज को मार गिराती है, और जिनकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है, या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में जाते हैं, या बैक्टीरिया बहुत एक टर्म यूज़ करते हैं कि विरुलेंट होते हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर इंसान की जो इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाती, और उनमें वो टीबी का फिर प्रोग्रेशन हो जाता है, खांसी होना, बुखार होना, फिर ये सब कुछ चल जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब वो एक इंसान कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाता है, किसी मीटिंग के अंदर में खांसता छींकता, वो दूसरे लोगों को फैलाता है, और ये चेन चलती रहती है।
0: बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टीबी है वो आनुवांशिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, ये एक जैसा कि सर ने बताया बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। अब बात आती है सर यहाँ पर लक्षणों के बारे में, तो किस तरह से कोई आम आदमी पहचान ले कि हो सकता है इनको टीबी हो गई है, तो ऐसे कौन कौन से वो सामान्य लक्षण होते हैं?
6: देखिए, वैसे जब बोलते हैं मेडिकल साइंस में 2+2=4 रेयरली होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लक्षण हैं जो जाने जाते हैं कि टीबी के मरीज में होते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अगर खांसी है किसी इंसान को और उसको 2 हफ्ते ऐसे ज़्यादा हो गए हैं, तो हम ये बोलते हैं कि एक सस्पिशन होना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। टीबी के मरीज को बुखार आता है, जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर, मतलब बुखार बहुत तेज़ नहीं होता लेकिन शाम के टाइम यूजुअली बढ़ने लगता है, और जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि जी हरारत सी होने लगती है रात में। कुछ मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि भी रात में उनको पसीने आते हैं, मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका वजन कम होना, कभी कभी खांसी के साथ में ब्लड आना। तो ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये जो लक्षण बताए, ये यूजुअली तब होते हैं जब फेफड़े वाली टीबी होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में फेफड़े वाली टीबी, और उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई सुन के ये बोले, कई बार मरीज ये आते हैं कि जी मुझे तो खांसी हुई नहीं, मुझे तो हल्का बुखार आया था, डॉक्टर अब आप बोल रहे हो कि भी ये टीबी कैसे हो सकती है, मुझे तो खांसी कभी हुई नहीं है ना, दुनिया बोलती है कि खांसी होती है ना, तो ये कुछ ये बोलते हैं जी मुझे तो बुखार आया ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं जितने सिम्टम्स जितने लक्षण का मैंने नाम लिया वो सभी एक साथ हों या सभी मरीजों में, किसी किसी मरीज में ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी मरीज आते हैं कि जी वजन कम हो रहा है, सिर्फ वजन कम हो रहा है, खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है ना, लेकिन पता चला या फिर उसने बताया हमें कि पिछले 2 महीने में मेरा 5, 6 या 7 किलो वजन कम हो गया। तो कई बार सिर्फ वजन ही कम होना एक लक्षण होता है, कभी कुछ भी नहीं होता, पेशेंट आता है जी वो खांसा मैंने और खांसी में ब्लड आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण सभी मरीजों में देखने को मिले, कभी कभी एक ही लक्षण होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ लक्षण बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि भी टीबी।
0: तो सर ये तो बात रही टीबी के लक्षणों की, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रारंभिक जांच होती हैं, टेस्ट होते हैं जिसके जरिए टीबी की पुष्टि की जाती है।
6: एक तो जो डॉट सेंटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर 5 किलोमीटर के रेडियस में बनाए गए हैं जो सभी जगह उपलब्ध हैं। अगर खुद को भी ये लगता है कि लक्षण टीबी जैसे हो सकते हैं तो आप वहाँ डायरेक्टली जाके भी वो जाँच करा सकते हैं। और जाँच होती है कि सिंपल बलगम देना होता है, और बलगम में एक बोलते हैं कि स्पुटम 4 AFB एसिड फास्ट बेसिलाई या जेडन स्टेनिंग, जिसमें हम बैक्टीरिया जो टीबी के बैक्टीरिया हैं उनको स्टेन करके देखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा साथ के साथ अगर फैसिलिटी है तो छाती का एक्सरे करा सकते हैं, और उसके बाद में तो फिर एडवांस टेस्टिंग बहुत सारे टेस्ट हैं। जैसे हम अभी टर्सरी लेवल पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हैं, हम पता करते हैं, बलगम भी नहीं आ रहा तो उसके लिए भी बहुत कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन जो दो मेन टेस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो यूजुअली प्राइमरी लेवल के जो केयर होता है वहाँ पे भी होते हैं, वो एक्सरे चेस्ट, छाती का एक्सरे और बलगम की जांच टीबी के कीटाणु के लिए।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही है टीबी की जांच की, अब बात कर लेते हैं अगर किसी भी व्यक्ति की टीबी की जांच में पुष्टि हो जाती है टीबी की, कि आपको टीबी का संक्रमण हो चुका है, तो इसका इलाज क्या है?
6: देखो इलाज है, सबसे पहली बात तो कुछ लोग का तो क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, इसका इलाज है भी कि नहीं है। हाँ मैं बोलता हूँ इलाज है। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा हर एक इंसान के लिए फ्री में जो मेडिसिन है वो उपलब्ध है। जैसे मैंने बोला कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में गवर्नमेंट ने एक डॉट सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है, और हैं भी वो। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी डॉट सेंटर है जहाँ से हम टीबी की दवाई मुफ्त में देते हैं। और यहाँ तो खैर हमारा वो एक मेडिकल कॉलेज का डॉट सेंटर है, तो हम यहाँ तो हम बिगड़ी हुई टीबी की दवाई भी, जो बहुत कॉस्टली होती है,

0: कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन होती है, तो अल्टीमेटली वो भी कंट्रोल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, अगर वो नियमित रूप से दवा खाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे, जो भी पेशेंट हैं उनको टीबी हो गया, उनका इलाज चल रहा है, दवाई वो खा रहे हैं, तो उस दौरान उनका जो पोषण है, उनकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए?
0: अभी जब मैंने आपसे जिक्र किया कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी टीबी है, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये एक इन्फेक्शस प्रॉब्लम है। उस समय इसका ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, तो उस समय हुआ करते थे सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि शहर के बाहर, आबादी के बाहर एक खुली हवा में एक शेल्टर बना दिए जाते थे, जहाँ सभी टीबी के पेशेंट रहते थे। और कॉन्सेप्ट ये होता था कि अच्छी धूप, अच्छी हवा और अच्छा खाना पीना किसी हद तक उनको ठीक करेगा। तो वही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पर पोल्यूशन कम हो। यहाँ पे हम जो पौष्टिक खाने की बात करते हैं, एक तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं और एक इसमें करते हैं स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट। तो पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से प्रोटीन हमें मिलता है। एक तो जितने भी दालें होती हैं, सख्त टाइप की दालें, चाहे मसूर की दाल, उड़द की दाल, काली दाल, पीली दाल, उन सबको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मांस, मछली, ये सब ये प्रोटीन के पार्ट हैं। बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर में कुछ विटामिन्स भी हों, तो हम यहाँ एडवाइस करते हैं कि कुछ फ्रूट्स लें। और ये पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए या इसकी डाइट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी रुपये हर महीने उन मरीजों को देती है जिनको टीबी पाई जाती है।
1: तो सब चलते चलते हमारे और श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में?
0: मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट एक्सपायर होने जा रहा, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन टीबी के पेशेंट को मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट तक ले जाएं, उसको पकड़ के उसका इलाज कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर उसको आज ठीक नहीं कराया तो वो आपको भी फैलाएगा, कुछ दिनों बाद आप भी उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है, ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंद का सेवन कर सकते हैं। शकरगंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
5: नमस्ते आशा दीदी,
4: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
5: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
6: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
3: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

हरा भरा गोद में। हाँ, हरा गा

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं, कहानी को गोपनीय रखने के लिए जगह के नाम एवं पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। ये कहानी हमारे ही सोसाइटी के आसपास के कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य आपको हिंसा के प्रति जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य आप में से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं।
1: नमस्कार, मैं युवराज और ये कहानी रोहतासपुर की है। उस गांव की लड़कियां जब बड़ी हो जाती थी तो एक निर्धारित उम्र पर उसे गांव के लोगों के समक्ष रखा जाता था और गांव का जो भी व्यक्ति उस लड़की को पसंद करता था वो लड़की के घर वालों को धन देता था। ऐसी उस गांव की परंपरा मानी जाती थी। उसी गांव में रणवीर ठाकुर नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। हालांकि उसने अपने 2 बेटियों की शादी तय कर दी थी लेकिन तीसरी अभी बाकी थी और वो पढ़ाई कर रही थी। उस गांव में शिक्षा के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं था लेकिन एक व्यक्ति था जो बच्चों को नीचे फर्श पर बैठाकर पढ़ाया करता था। रूपाली वहां रोज पढ़ने जाती थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने सोचा कि यहाँ की पढ़ाई पूरी करने के बाद से वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाएगी, लेकिन उसे क्या ही पता था कि उसके साथ तो कुछ और होने वाला है। एक बार की बात है, जब रूपाली रोज की तरह पढ़ने स्कूल जा रही थी तो अचानक से कहीं उड़ता हुआ एक अखबार का टुकड़ा उसके समक्ष आ गिरा। उसने उस अखबार के टुकड़े को अपने हाथ में लिया और देखा तो उसमें एक महिला की तस्वीर बनी थी और उसके नीचे लिखा था कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में पढ़कर रूपाली को बहुत अच्छा लगा और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो बड़ी होकर कल्पना चावला की तरह ही नाम कमाएगी। एक दिन रूपाली जब पढ़ने गई तो गांव का एक

0: व्यक्ति उसके पिता रणवीर के पास आया। दोनों में काफी देर तक बातें हुई। बातों बातों में रणवीर ने उस व्यक्ति से अपने घर से जुड़ी पैसों की समस्या के बारे में बताया। कुछ समय बाद रूपाली हंसते खिलखिलाते हुई हमेशा की तरह घर पहुंचती है। घर आया व्यक्ति रूपाली को देखता है और कुछ सोचने के बाद से उसके पिता रणवीर से कहता है कि तुम अपने रूपाली की शादी करवा दो। गांव की परंपरा के अनुसार रूपाली के बदले में तुम्हें मोटी रकम मिल जाएगी, जिससे कुछ समय तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही रूपाली के पिता के मन में ये बात आ जाती है और वो इसके लिए मान जाता है। अगले दिन जब रूपाली पढ़ने के लिए जाती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घर के इन चार दीवारी के अंदर रहना है और आज शाम को ही तुम्हारी शादी के लिए कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। इतना सुनते ही रूपाली रोने लगती है और वो अपनी मम्मी से कहती है कि माँ, मेरी उम्र तो अभी बस 14 साल है, इतनी छोटी उम्र में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, और मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है। वो बार बार अपने पापा को समझाती है और दोनों बाप बेटी में बहुत देर तक बहस होती है और रूपाली को शादी के लिए बार बार मना करने पर उसे थप्पड़ मार के कमरे में बंद कर देता है। रूपाली बहुत परेशान हो जाती है। रूपाली बार बार अपनी माँ को कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो रूपाली की माँ कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मेरी शादी हो गई थी, और इतना ही नहीं, उस समय तुम्हारी बड़ी बहन साल भर की थी। और घर की तू हालत तो देख, तेरी शादी से तेरे बापों को इतने पैसे मिलेंगे कि गांव के मुखिया के पास हमारी रखी गिरवी जमीनें भी हमें वापस मिल जाएगी और घर की समस्या का कुछ समाधान भी होगा। माँ की ये बात सुनकर रूपाली को बहुत दुख होता है और ना चाहते हुए भी वो दबाव में आकर शादी के लिए तैयार हो जाती है। रूपाली बेहद खूबसूरत होती है और वो बहुत से पुरुषों को पसंद आती है। बगल के गांव का एक मुखिया था जिसकी पहले से ही 4 शादियां हो चुकी थी और अलग अलग कारणों से उसकी चारों बीवियां उससे अलग हो चुकी थी। अब वो रूपाली से शादी करके अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहता था। अंततः उसका विवाह रूपाली से हो जाता है। वो रूपाली के साथ जोर जबरदस्ती करता है। रूपाली उसे बहुत रोकती है। अब वो रूपाली के साथ जबरन दुष्कर्म करता था। रूपाली चीखती चिल्लाती रहती थी लेकिन वो मुखिया एक ना सुनता था। वो कहता था कि तुम पर मेरा अधिकार है, मैंने तुमसे शादी किया है, तुम्हारे बाप को तुम्हारे बदले मोटा धन दिया है, अगर तुमने आनाकानी की तो तुम्हारे बाप से मैं वो सारे पैसे ले लूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। रूपाली डर जाती है। कुछ दिन बाद की बात है, मुखिया बहुत खुश होता है और वो कुछ जरूरी काम के लिए शहर गया हुआ था, वापस आता है और गांव के एक मिठाई वाले से कुछ मिठाइयां खरीदता है। मिठाई वाला उस मिठाई को अखबार के टुकड़ों में रख के मुखिया को देता है। मुखिया रूपाली के सामने वो मिठाइयां जमीन पे फेंक देता है और बोलता है कि खा ले इसे, मैं बहुत खुश हूँ और तुम मुझे बहुत खुश रखती हो। काफी देर तक रूपाली मिठाई की तरफ देखती भी नहीं है लेकिन अचानक से उसकी नजर अखबार पर पड़ती है जिसमें कुछ तो हिंसा के बारे में लिखा होता है। रूपाली उसे जिज्ञासा पूर्वक पढ़ती है और वो ये निर्णय ले लेती है कि अब वो इस हैवान के चंगुल में नहीं रहेगी। वो इससे आजादी चाहती थी, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। आसपास की कुछ महिलाएं भी रूपाली को देखती थी और वो उस पे बहुत तरस खाती थी। हालांकि उन महिलाओं के साथ भी वैसा ही दुष्कर्म किया जाता था। उन गांव की महिलाओं के मदद से रूपाली घर से भागने में सक्षम हो पाई और गांव की कुछ महिलाओं ने भी हिम्मत जुटाई और रूपाली के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पे जाके रूपाली ने अपने साथ हुई सारे हिंसा के बारे में बताया पुलिस ने बिना देरी किए उस गांव के मुखिया पर और गांव के तमाम उन लोगों पर कार्यवाही किया और उन्हें कोर्ट में शामिल किया और कोर्ट भी उन्हें हिंसा के जुर्म में सजा सुनाती है।
1: तो अभी आपको समझ में आया कि हिंसा किसी भी रूप में हो सकता है। हिंसा करने वाले अलग अलग तरीके से महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं, पर महिलाएं इस बात से अनजान रहती हैं कि उनके साथ जो भी किया जा रहा है वो हिंसा के अंतर्गत आता है। ये जरूरी नहीं है कि हिंसा सिर्फ हमारे ससुराल में ही हमारे साथ होता है, हिंसा हमारे मायके में भी हमारे साथ होता है और हम उस हिंसा को ये सोचकर चुपचाप सहते रहते हैं कि हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है वो करने वाले हमारे पिता या हमारी माता या हमारा भाई ही तो है। लेकिन ये गलत है। हिंसा हिंसा होती है, वो चाहे किसी के जरिए किया जा रहा हो। जरूरी तो ये भी नहीं होता है कि हिंसा सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही किया जाए। कई बार तो हमारे समाज में ये भी देखा जाता है कि एक महिला ही महिला के लिए खतरनाक बन जाती है, उसके साथ हिंसा करती है, क्योंकि जब ससुराल में एक लड़की पर उसके सास द्वारा हिंसा की जाती है तो वो सास भी महिला ही होती है। आप हर दिन समाचार में या फिर अखबार में इस तरह की न्यूज पढ़ते रहते हैं कि किसी ने नदी में कूदकर जान दे दी तो किसी ने खुद को आग लगा ली। आखिर आपने सोचा है कि इस तरह की खबरें क्यों छपती हैं? उन महिलाओं के साथ जो भी हो रहा होता है उसे रोकने का उपाय उन्हें पता ही नहीं होता। वो इस बात से भी अनजान रहती हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है, घरेलू हिंसा। अच्छा, ये तो बात हो गई घरेलू हिंसा की, जिसके बारे में हमने अपने हर एपिसोड में बात किया है और इसे रोकने का उपाय भी बताया है। लेकिन आपको पता है कि कई बार लड़कियों के साथ कुछ इस तरह की हिंसा होने लगती है कि उन्हें लगता है कि अगर हम किसी से इस बारे में बात करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी या फिर हमारी इज्जत जाएगी। कई बार ये होता है कि लड़कियों के न्यूड पिक्चर्स लड़के अपने फोन में रख लेते हैं और उस न्यूड पिक्चर के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं और लड़कियां भी मजबूर हो जाती हैं उनकी कही हुई हर बात मानने पर। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे भी रोका जा सकता है? लेकिन जब तक आप किसी से इस बारे में बात नहीं करेंगी तब तक आपकी कोई मदद कैसे करेगा? हमने अपने हर एपिसोड में आपको यही बताया है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की हिंसा हो रही है तो उसकी जानकारी आप किसी अपने करीबी को जरूर दें। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर इस बारे में नहीं पता है तो जब आप इस बात को किसी से शेयर करेंगी तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान दें कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो, विश्वास हो कि आपकी परेशानियों से निकलने में वो इंसान आपकी मदद कर सकता है, उसी से अपनी बातें शेयर करें। वैसे तो हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए इतने कानून बना दिए हैं कि अब वो खुद अकेले अपने साथ हो रहे हिंसा को रोक सकती हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ हो रहे हिंसा की जानकारी किसी को देना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप अपने करीबी से इस बारे में जरूर बात करें। कोई भी लड़की या महिला अगर किसी के द्वारा हिंसा की शिकार हो रही है, अगर सोशल मीडिया के जरिए भी कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आप 1090 या 112 पर कॉल करके इस बात की जानकारी उन्हें दे सकती हैं और इसके लिए आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगर आपको इस बात का डर है कि आपको बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे या पुलिस आपके घर आएगी, तो हम आपको बता दें कि ऐसी किसी भी तरह की बात नहीं होगी। 1090 या 112 वोमेन हेल्पलाइन नंबर है जिसे खास तौर पर महिलाओं के लिए नियुक्त किया गया है और यहाँ पर आपकी हर जानकारी को गुप्त रखा जाता है और आपके द्वारा किए गए शिकायत की जांच गुप्त तरीके से ही होती है। तो अब किस बात का डरना है? हिंसा के खिलाफ मिलकर आवाज उठाइए और कहिए, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो। भारत में हर रोज न जाने कितनी महिलाएं इस तरह की हिंसा की शिकार हो जाती हैं, और महिलाएं ही नहीं बल्कि कम उम्र की लड़कियां भी शिकार हो जाती हैं। किसी भी तरह की हिंसा से आप बच सकती हैं अगर आपको कुछ बातें पता हो, जैसे 1090 या 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल करके अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत कर सकती हैं। इसमें आपके नाम पहचान को गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा महिला थाना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी या अपने क्षेत्र के वन स्टॉप सेंटर में जाकर अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत कर सकती हैं और उससे निजात पा सकती हैं। आप अगर किसी भी तरह की हिंसा की शिकार हो रही हैं तो अपने किसी करीबी से इस बारे में जरूर बात करिए और इस तरह की हिंसा को रोकने में हमारे पूरे राष्ट्र की मदद करिए।
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शाओ 90.8 FM।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM, सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जी हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों आदाब, मैं डॉक्टर चमन आरा खां NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 7वीं जमात की किताब अपनी जबान की दर्सी किताब से एक नज्म पढ़ाएंगे जिसका उन्वान है मेरा वतन। ये नज्म जो है ये लिखी है शफीउद्दीन नैयर ने। शफीउद्दीन नैयर के बारे में थोड़ा सा हम जान ले एक मुख्तसर तारुफ, उसके बाद फिर हम इस नज्म को पढ़ेंगे। शफीउद्दीन नैयर 1903 में पैदा हुए। नैयर इनका तखल्लुस था, अलीगढ़ के कस्बे अतरौली में इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की, फिर अलीगढ़ तालीम हासिल करने गए, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ पर 65 बरस की उम्र तक पढ़ाते रहे। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनका इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। तो ये जो नज़्म है मेरा वतन, ये भी शफीउद्दीन नैयर की नज़्म है। इन्होंने ज़्यादातर जो नज़में लिखी हैं वो जो कुदरती मनाजिर हैं उन पर लिखी है, फूलों पे, बागों पे, इस तरह की नज़में जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। जैसे बंदरवाला इनकी नज़्म है, और भी बहुत सी नज़में हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसी तरह से देखिए वतन के ऊपर तो हमारी पूरी उर्दू शायरी में बहुत नज़में लिखी गई हैं। इसकी जो दूसरी और नज़में हैं जिसमें दुनिया में जन्नत, वक्त की डिबिया, ये सब नज़में हैं। शफीउद्दीन नैयर साहब ने जो ये नज़्म लिखी है मेरा वतन, तो इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के जो परिंदे हैं, चिड़िया है, तोता है, मोर है, बुलबुल है, चकोर है, इन सब का जिक्र किया है। झीलों का जिक्र किया है, दरियाओं का जिक्र किया है, झरनों का जिक्र किया है। तो आइए आज इस नज़्म को हम पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीने वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शफीउद्दीन नैयर ने जो शुरुआत की है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी एक फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि देखिए ये मेरा वतन है, कि जिसमें चिड़िया है, तोता है, मैना है, मोर है, और कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। तो कुमरी जो है ना फाख्ता की किस्म का बच्चों एक परिंदा होता है, उसकी आवाज़ जो होती है ना बहुत गूंजदार होती है उसकी आवाज़। और चकोर जो होता है तीतर की किस्म का एक परिंदा है, उसे चांद का आशिक भी कहा जाता है। कहते हैं ना वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। अब जैसे पहले शुरुआती उन्होंने नज़्म की ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, कहते हैं ये मेरा वतन है, ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि ये वो चिड़िया है, वो तोता है, वो मैना है, वो मोर है, वो कोयल है, बुलबुल है, कुमरी है, चकोर है, झीलों की लहरें हैं, यानी झीलें जो हैं उनमें जो लहरें उठती हैं वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। झरनों का गिरना ना पूरा एक मंजर हमारे सामने आ जाता है, झरने गिर रहे हैं, पानी का शोर हो रहा है, झीलों की लहरें हैं, दरिया जोरों पर है, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन, पहाड़ों का भी

जिक्र कर दिया कि सरसब्ज, जिसमें हरियाली छाई हुई है। सरसब्ज के मायने होते हैं हरियाली, हरा। सरसब्ज इसके पहाड़ और वन। उसके बाद कहते हैं, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियां, वो खुशरंग फूलों की गुलकारियां। अब यहाँ पर गल्ले मेवे, गल्ले तो अनाज हो गया, मेवे जो होते हैं जैसे बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह, ये सब मेवे होते हैं। तरकारियां यानी सब्जियां, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियां, यानी गुलकारियां यानी ऐसे ऐसे फूल हमारे मेरे मुल्क के मेरे वतन में है जो कहीं नहीं मिलेंगे। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां, और फुलवारियां भी हैं, और कैसी फुलवारियां हैं जो सरसब्ज हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियां। सैराब यानी पानी से भरी हुई, खुशनुमा दिल को खुश करने वाली खुशनुमा क्यारियां मौजूद हैं। जमीने वो जरखेज दिलकश चमन, जमीने जरखेज हैं यहाँ की। यहाँ पे जो है हर फसल पैदा होती है, जैसे कि बताया कई मौसम है हमारे यहाँ, गर्मी, सर्दी, बरसात, और एक बाहर का मौसम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर मौसम की फसल है, जमीने हैं, जमीने जरखेज हैं, दिलकश चमन है, खूबसूरत चमन यानी बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी मेरे वतन में ये सब चीज़ें हैं। हर तरह के तरकारियाँ हैं, हर तरह के गल्ले हैं, गल्ला यानी अनाज है, दालें हैं, चावल, ये सब तरह की हर तरह की फसल जो है मेरे मुल्क में मौजूद है, और इतना जरखेज मुल्क है मेरा। इसी तरह से पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, पहाड़ों का मंजर, पहाड़ों का मंजर की बात कर रहे हैं, बनों का समा यानी बन जो है जंगलों में, जैसे पेड़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, झरने हैं, इनमें हजारों ही चश्मे रवा, और इसमें चश्मे रवा हैं, ये झरने हैं, चश्मा कहते हैं झरने को, तो चश्मे रवा हैं। कहाँ तक बयां हूँ इसकी खूबियाँ, मैंने कितनी खूबियाँ मैं इस इनकी बयान करूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना दिलकश मेरा वतन है, है फिरदौस का चमन पर घुमा। फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत पर जो है ये चमन जो है, यहाँ के जो बाग हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत का गुमान होता है, जन्नत तो नहीं लेकिन गुमान होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जन्नत में इसी तरह के फल फूल पेड़ पौधे गल ये सब चीज़ें होंगी। ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जैसे कि मैंने बताया जो है क्यारियाँ हैं, गल्ले हैं, यहाँ पे हर तरह के अनाज हैं, मेवे हैं, खुश्क फल हैं, बादाम है, अखरोट, किशमिश वगैरह वगैरह और भी हैं, तो जो इस मुल्क में पैदा होते हैं, सब्जियाँ हैं, गुलकारियाँ हैं, गुल बूटे हैं, फूल जो है उनको तराशा जाता है, सैराब है, पानी से भरे हुए हैं जो चश्मे हैं, जरखेज है ऐसी ज़मीन। जरखेज़ किसे कहते हैं, उपजाऊ को कहते हैं बच्चों, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में हर तरह की फसल होती है, गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, बरसात की अलग है, तो इस तरह की फसलें होती हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी का, पानी या सोता, ज़मीन से उबलता हुआ पानी, पहाड़ों पे देखे होंगे आपने झरने बहते हुए, और चश्मा जो होता है वो ज़मीन से उबलता हुआ पानी होता है। रवा यानी बहता हुआ, फिरदौस के माने जन्नत है, जो मैंने बताया कि एक साल उस पर चमन जो है, जो बाग हैं उन पर जन्नत का गुमान होता है। ऐसे ही गुमान, गुमान के माने होते हैं शक शुबा यानी वहम गुजरता है, हालांकि वो जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत की जैसा है। जैसे हम कहते हैं अरे कितना खूबसूरत बाग है, कितना दिलकश बाग है, कितना खुशनुमा बाग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आई, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हैं, हवा के बारे में भी कहा जाता है। इसी तरह से दिलकश, दिल पसंद है, दिल को लुभाने वाली है। ऐसे ही बागे इरम, बागे इरम कहते हैं जन्नत का बाग, इरम बागे इरम यानी जन्नत का बाग, इरम भी जन्नत को ही कहा जाता है। बागे अदन, बागे अदन वो जन्नत का बाग जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो इस नज़्म में ज़्यादातर जो मंजर बयान किए गए हैं बड़े खूबसूरत मंजर है, जिसमें सबसे पहला मंजर जो है वो बागों का है, फूलों का है, परिंदों का है, उसके बाद चश्मों का है, पहाड़ों का है, दरियाओं का है। तो ऐसी इसी नज़्म के उस पर मुझे एक हमीदुल्ला अफसर का एक नज़्म है जैसा मेरा देश, उसकी एक चार लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी नज़्म में कही हैं। कैसे अच्छे अच्छे दरिया
वो उनका इठला कर चलना। दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में सानी नहीं उनका, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। देखिए जहाँ इन्होंने कहा कि दरियाओं के बारे में कहा है, ऐसी हमीदुल्ला अफसर ने भी कैसे अच्छे अच्छे दरिया, वो इनका इठला कर चलना, और दो बहने यानी गंगा और जमुना का जिक्र कर दिया, गंगा जमुना उनका जिक्र किया है, और दुनिया में उनको कोई सानी नहीं है यानी उनको कोई दूसरा है नहीं, जैसी गंगा जमुना हमारे मुल्क में बहती है, तो जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। अब हम सवालों की तरफ आते हैं कि शायर ने इस नज्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है, तो वही है कुमरी का है, चकोर का है, बुलबुल का है, मोर का है, चिड़िया, तोता, मैना, इन सब का जिक्र जो है इस नज्म के अंदर किया है। दिलकश चमन किसको कहा है उसने, वतन को कहा है। इस नज्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं, जो खूबियां बयान की गई हैं उनको आपको इसमें से देखकर समझकर लिखना है, और वो क्या खूबियाँ हैं, वो यही है कि भई आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, हर तरह के परिंदे हैं, हर तरह के मेवे, हर तरह का जो है वो अनाज यहाँ पैदा होते हैं, और यहाँ के बाग, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, इन सब का जिक्र जो है भारत शायर ने, शबीद्दीन नय्यर ने बड़ी खूबी से बयान किया है, और उसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया है वो बड़ी आसान और आम फहम ज़बान है, यानी ऐसी ज़बान है जिसको आप जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल लफ्ज जो है उन्होंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सारे लफ्ज जो हैं वो आसान है और उसकी मौजू की मुनासबत से हैं, क्योंकि वो वतन के फूलों का, बागों का इसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये सब लफ्ज़ों का, दिलकश जैसे लफ्ज है, खुशनुमा लफ्ज है, तो इन सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई नज़्म लिखते हैं, क्योंकि नज़्म जो है बच्चों एक मुसलसल इज़हार ख्याल होता है, नज़्म जो है किसी मौजू पर मुसलसल इज़हार ख्याल करते हैं, जैसे कि ये नज़्म है मेरा वतन, तो मेरे वतन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा वतन कैसा है, इस पर जो है वो शायर का पूरा जो है फोकस है, और उसमें वो यही बताते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा वतन है, और उसमें ये सब चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का गुमान इस पर हो रहा है, और खूबियाँ भी बयान की हैं अपने वतन की, कि हर तरह के अनाज हैं यहाँ पर, हर तरह के परिंदे हैं, और हर तरह की मेवजात यहाँ पर है, हर तरह के परिंदे, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई नज़्म पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें, नज़्म को नज़्म के अंदाज से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि हर चीज़ हर आप पर वाजे हो जाए, लफ्ज़ को दुरुस्त अदायगी के साथ, मुनासिब लब व लहजे के साथ जो है आप उसको पढ़िए, तलफ़ुज़ का ध्यान रखिए, दिलकश को दिलकशी बोलिए, दिलकश मत बोलिएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग फिर जो है वो बदल जाएंगे, ऐसे ज़रखेज़ लफ्ज़ है तो ज़रखेज़ मत करिए उसको, ज़रखेज़ पूरा क़े और ज़े की आवाज़ जो है वो पूरी निकलनी चाहिए, इसी तरह से जो है खुमरी है तो कुमरी ना निकल जाए आपके मुंह से, तो कुमरी को खाफ की आवाज़ जो है वो बाकायदा आपको तलफ़ुज़ को ऐसे ही अदायगी करनी है, और मुनासिब लब व लहजे के साथ, मौजूनियत के साथ उसको पढ़ना है, और पढ़कर समझना है, समझ कर उसको जो मरकज़ी ख्याल है उसको लिखना है। मरकज़ी ख्याल क्या है, वो यही है कि वतन के बारे में, वतन की अहमियत को, वतन की खूबियों को शायर इस नज़्म में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। पैगाम क्या देना चाहता है, पैगाम यही देना चाहता है कि भी मेरा वतन हिंदुस्तान जो है वो इतना दिलकश और इतना अच्छा है कि इस पर जन्नत का गुमान होता है मुझको, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन है यहाँ की, बाग फल और बाग है, मेवाजात हैं, बागों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ धुल जाती है, सब्ज़ा जो है वो चारों तरफ साफ सुथरा नज़र आता है, फूलों में जान पड़ जाती है, कलियों में जान पड़ जाती है, और परिंदे भी चहचहाने लगते हैं और खुश होते हैं क्योंकि गर्मी से सबका बुरा हाल होता है। तो इस तरह से उसने जो शुरुआत में जो एक कहा है कि मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी एक बड़ा ही बयान कर रहा है, अपने वतन की खूबियां बयान कर रहा है। इसी तरह से इसमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं नीचे लिखे हुए,
कुछ लफ्ज़ हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें है वतन, तो वतन पे आप वतन लिखिए और वतन को जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि मेरे वतन का नाम हिंदुस्तान है और उसमें बहुत दिलकश बाग है। इसी तरह से मंज़र है, तो पहाड़ों का मंज़र बहुत अच्छा मालूम होता है। तो मंज़र लफ्ज़ जो है उसमें ज़रूर आना चाहिए, उसकी मीनिंग मत लिखिएगा बल्कि उस मंज़र को, क्योंकि लफ्ज़ अपने आप में कुछ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चमन लफ्ज़ है, ऐसी समा, कैसा खूबसूरत समा है या कैसा दिलकश समा है। तो समा यानी कैफियत, एक तरह से किस तरह का मंज़र है, तो वो मंज़र जो है वो आप इसके अंदर समाज में लिख सकते हैं, कैसा अच्छा समा है या कितना खुशगवार वक्त है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर लफ्ज़ हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इसमें जैसे तरकारी है, तो तरकारी जो है वो वाहिद हो गया, उसके जमा तरकारियाँ हो गई। ऐसी जो है इसमें चश्मा है, तो उसकी जमा जो होगी बहुत सारे चश्मे नहीं चश्मों। ऐसी जो है बाग, बाग की जमा बागों। इस तरह से नज़्म में जितनी भी वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज आ रहे हैं उनको इसी नज़्म से भी तलाश करके लिखिए। ऐसे इसमें मैंने बताया था जैसे लिखते वक्त भी जो इमला जो लिखते हैं आपकी मैडम आपको लिखवाती हैं, या घर में आप अपने इमला लिखते हैं, आपके घर में आपकी बहन या आपकी मदर आपको इमला लिखवाती हैं, तो उसमें जैसे इसमें है तरकारियाँ, तो आपने अगर उसको सही सुना होगा तो सही लिखेंगे, अगर आपने सुन लिया तरकारियाँ तो उसको क्या लिखेंगे, तरकारियाँ। तरकारियाँ तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, तरकारी है, तरकारियाँ हो गया। इसी तरह से अब जैसे बागों, बागों तो गैन की आवाज़ ने लिख के आपने गाफ उसके अंदर लिख दिया तो वो हो जाए बागों, तो बागों तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है इसका इमला जो है वो दुरुस्त आपको लिखना होगा। ऐसी मंजर है, तो मंजर को मीम नून और जो और रे से लिखा जाता है, और अगर आप उसको जे से लिख देंगे तो वो मंजर मंजर नहीं रहेगा, गलत लिख जाएगा। तो लफ्ज़ों को सही हिज्जे के साथ लिखना, सही तलफ़ुज़ के साथ लिखना ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वतन है, वतन वाव तोए और नून है, तो आप इसमें वतन को जो है बहुत से बच्चे लिख देते हैं वाव ते और नून वतन, तो ते तो उसमें है नहीं बल्कि तोए हैं, तो तोए को जो है उसमें लिखा जाएगा। तो इसी तरह सरसब्ज़ है, तो सरसब्ज़ को आप सीन रे सीन से ना लिख कर स्वाद से लिख दें तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इमला भी आपको दुरुस्त करना है, तलफ़ुज़ भी आपको उसकी अदायगी भी सही से करनी है, और उसको उसका जो मतलब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मुनासिब लबोलोजी के साथ और मौजूनियत के साथ आपको पढ़ना है, मौजू करके पढ़ना है। यानी कि आप एक आंग होता है ना, एक लय होती है एक नज़्म के अंदर, उसी नज़्म के तहत उसको पढ़ना है। जैसे ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। देखिए एक ही लय में, लय आपकी एक ही होनी चाहिए, और अगर आपको आपने उसको ऐसे पढ़ दिया वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर इस तरह से, तो कोई भी नज़्म होती है ना उसका अपनी एक लय होती है, उस लय में जो है अगर आप उस नज़्म को पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। आप जब उसको पढ़ें या उसकी किरत करें या उसको बुलंद खानी करें तो आवाज़ का भी आपको उतार चढ़ाव आपको देखना है। तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत खींच के पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चढ़ा दिया उसको, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान पढ़ते वक्त रखना है। जैसे मैंने बताया था चिड़िया, तो चिड़िया की जमा चिड़ियाँ हो गई, बुलबुल बुलबुलें, झील की जमा हो गई झीलों, दरिया की जमा दरियाओं, फिर झरना झरना की झरनों हो जाएगी, पहाड़ की पहाड़ों होगी और मेवे की में वो हो जाएगी। तो इस तरह से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद अगर आप बनाएंगे तो नए नए लफ्ज़ भी आप लिखेंगे और इस तरह से आपकी आपकी ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। और बच्चों आप भी नज़्म लिख सकते हैं किसी भी उस पर, इन्होंने तो वतन पे लिखी है, आप किसी भी मंजर पर, आप फूल पे लिख सकते हैं,
आप बरसात पे लिख सकते हैं, या पहाड़ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको परिंदा नजर आता है तो चिड़िया पे भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप नज़्म, लेकिन लिखते वक्त जब आप लफ्ज़ों का इंतखाब करें, तो जैसे चिड़िया है तो चिड़िया से मुतालिक जितने लफ्ज़ हैं, जैसे चिड़िया आई दाना लाई इस तरह से, तो चिड़िया से मुतालिक जो जो चीज़ें हैं वो आपको उसके अंदर जो लफ्ज़ियात है उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना होगा। चिड़िया आई दाना लाई, या फिर एक नज़्म जो है वो, एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली नन्नी मुन्नी भोली भाली, पाली और भोली भाली, तो इस तरह से उसमें पूरा ये कहानी है कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चू चू चू चू करके रोई, सारी रात इसी में कोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यार से जब उसको चमकारा, चिड़िया ने तोतों से चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी अंदर आई, मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो देखा, ये भी एक गीत है और चिड़िया पर है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के नाम से है, बरकतुल्ला फराक की नज़म है, जो कि बच्चों के शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो ये मुझे एक नज़म याद आ गई, क्योंकि आपको बता रही थी कि नज़म को किस तरह से लिखा जाए, तो वो नज़म आप लिख सकते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप नज़में भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यार बच्चा नज़म लिख सके। आप नज़म नहीं लिख सकते तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में इकट्ठी कीजिए, उन नज़मों को याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए और उसको सुनाइए आप अपने घर वालों को, और या फिर जो है तरन्नुम से गाइए, मिलकर गाइए, दो तीन लोग अगर मिल के गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाने से क्या होता है वो जल्दी समझ में आएगी, और बच्चे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं खासतौर पे नर्सरी केजी के या तो इस तरह के बच्चे जो है ना नज़में गा गा के पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है, क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है, क्योंकि पाँचवीं क्लास आप पास कर चुके हैं, प्राइमरी आपका इब्तदाई जमातों से आप निकल कर अब प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में आपसे क्या तवक्कु की जाती है, यही तवक्कु की जाती है कि आप नए नए अल्फाज जो हैं उनको समझेंगे, और जबान मतलब आपने जो वहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है, तो यहाँ अगर आपका जो मयार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, और वो कैसा होगा ऊँचा, कि आप रवानी से बोलेंगे, रवानी से अपनी किसी बात का इजहार करेंगे, किसी मंजर को देख के उसके बारे में दो चार जुमले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के जुमलों को लिखेंगे, या वतन से मुतालिक और किसी ने जो नज़में कही हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी हामिदुल्लाह अफसर की नज़म, और ये अल्लामा इकबाल ने भी लिखी है नज़में, तो उन नज़मों को भी आप ले सकते हैं, या और जो मनाजिर फितरत पे लिखी गई हैं नज़में, उन नज़मों को भी आप इंटरनेट से तलाश कीजिए, उनको लिखिए और उनका एक वो बना लीजिए। ऐसे ही अब इसमें जो है वो से शेर मुकम्मल करने हैं, तो मिसरों को सही तरतीब से देख के लिखना। मिसरा दे दिया इसमें, वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियाँ, अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तरकारियाँ और गुलकारियाँ, कहाँ तक बयां उसकी हों खूबियाँ, मुझीलों वो सरसा बागों की फुलवारियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुबा, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर। तो इस तरह से आपको नज़्म जब आप देखेंगे, तो ये जो किताब में जो मशकें दी गई हैं उस मशक में ये लिखा गया है कि मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जो शेर होता है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दोनों मिसरों को आपको जो है मिलाना है। अब इसमें एक एक मिसरा इधर दिया है, तो दूसरा जो है वो आप अगर आपको नज़म याद है तो बखूबी उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको देखकर और उस नज़म को कीजिए। अच्छा, इस ज़बान को मैं ये भी कहूँगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि नज़म को ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी नज़म है और ज़बानी याद की जा सकती है। ज़बानी याद कीजिए, फिर उसको जो है वो तरन्नुम से गाइए, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जब आपको याद होगी नज़्म ना, तो आप आराम से उस नज़्म को लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें वतन की जो सबसे बड़ी वतन की अहमियत को बयान किया है शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने, और इसके अलावा वतन की या मुल्क की
हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को मुख्तसरन बयान किया गया है, क्योंकि नज़्म तो मुख्तसर बयान होता है, बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाती है, और नसर जो होती है उसको हम वजाहत के साथ लिखते हैं।

0: अब ये मेरा वतन है, मेरा वतन पे आप मज़मून भी लिख सकते हैं बच्चों। तो एक मज़मून जब लिखेंगे तो आप उसमें लिखिए कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतना ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखी है, जो जो आप महसूस करते हैं उन सब चीज़ों को लिखिए। एक पैराग्राफ कम से कम आप लिख सकते हैं मेरा वतन पर। ऐसे ही इस वतन की मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है कि शायर को अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। वो ये कहता है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी उस पर एक फख्र महसूस करता है कि देखिए मेरा वतन कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है कि यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, क्यारियाँ हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने नज़्म में भी अगर अगर लिख सकते हैं तो नज़्म में लिखिए। नज़्म ज़रूरी नहीं आप मेरे वतन पे ही लिखें, किसी और मौजू पे भी लिख सकते हैं। मेरे वतन पर आप मज़मून भी लिख सकते हैं, वतन पर कोई ड्रामा भी आप जो है वो लिख सकते हैं, उसको स्टेज कर सकते हैं। वो ड्रामा आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर आप बना सकते हैं तो उसको जो है वो बना सकते हैं और उसमें कुछ मुकालमे वगैरह जो है वो डाल दीजिए। और बहुत कितना 5 मिनट का बनाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही आप अपनी बात को जो है बयान कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको इस नज़्म से एक तो पढ़ना, मौजूनियत के साथ पढ़ना, और दूसरी ये कि लय के साथ पढ़ना, सही तलफ़ से अदायगी करना, और इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है उससे वाकफियत हो गई होगी। इसके अलावा वतन की अहमियत को जो शायर ने जो बयान की है, ज़बान को जो लिखा है, जो उनका अंदाज़ है, जिसको कहते हैं हम तहरी उसलूब कहते हैं, जिसको स्टाइल कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस पर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार लगिए कि आपको ये नज़्म कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी। इस पर कम से कम 5 जुमले तो आप लिख ही सकते हैं। और मैं समझती हूँ बच्चों आपको आज की नज़्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जो है इस नज़्म को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझ के फिर लिखिए। तो इस तरह से ये नज़्म जो है वो वतन की अहमियत, उसकी वतन से मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है। तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ आपको ये नज़्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.
6: Vasudhaiv

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं, उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी, धरती का अमृत। श्रोताओ, पिछले भाग में आपने जाना कि हमारी पृथ्वी का आधा भाग लगभग हर

समय बादलों से घिरा रहता है। बादलों को उनके आकार और ऊंचाई के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। धरती पर कोहरा कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है, तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी,

0: अरे दीदी 5 मिनट तो रुक जाओ, मुझे भी बनाना है और आधे घंटे से
1: नहा रहे तू। अरे सृष्टि, मानव की तो आदत ही हो गई है पानी व्यर्थ बहाने की। अकेला इतने पानी से नहाता है जितने में 4 आदमी नहा ले। मानव बाहर निकलना,
0: पानी की कमी चल रही है और ये मानव है कि समझता ही नहीं।
2: अरे सुनो, तुम सब मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे आराम से नहाने दो उसे।
0: हाँ अभी मानव की तरफ तारीफ करने लग गए।
2: अरे बेटा वो
0: आपको मानव को समझाना चाहिए ना कि पानी इतना बर्बाद ना किया।
1: और वैसे भी अब नल में रोज पानी नहीं आता,
0: और जिस दिन नल में पानी आता है उस दिन भी पानी इतना कहाँ आता है कि हमारी सभी पानी की जरूरतें पूरी हो सके। वो तो विवेक भैया है कि चौराहे वाले नलकूप से पानी लाकर जमा करते रहते हैं, वरना मानव इसको तो नहाने का तो छोड़ो मुंह धोने का भी पानी ना मिले।
1: पर सृष्टि अब चौराहे वाले हैंडपंप में पानी काफी कम हो गया, अब कैसे होगा?
0: तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी।
2: अरे वसुधा, वैसे भी हर साल इन दिनों में पानी की कमी हो ही जाती है।
0: पापा क्यों ना हम अपने यहाँ ट्यूबवेल लगवा लें। हाँ बिल्कुल, अब तो ट्यूबवेल लगवाना ही होगा। अरे दीदी आप नहाने की बड़ी जल्दी मचा रही थी ना, आप जाओ ना नहाने के लिए, गप्पे क्यों लगा रही हो बैठी हुई यहाँ पर?
1: मानव सृष्टि गप्पे नहीं लगा रही, वो तो बाथरूम से तेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी।
0: ओ, ये मानव तो नहाने में भी आधा घंटा लगाता है और नहाता भी है तो 2 बाल्टी से। अरे दीदी मैं पानी फालतू थोड़ी बहाता हूँ, नहाने में 2 बाल्टी तो लग ही जाती है।
2: बेटा देखो एक बात तो है, जब हम 1 बाल्टी पानी से अच्छी तरह से नहा लेते हैं तो फिर तुझे 2 बाल्टी पानी क्यों चाहिए?
0: अरे पापा मैं ये सब नहीं जानता, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पानी बहाता नहीं बल्कि नहाने में उपयोग करता हूँ। जो भी हो बेटा, पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपनी आदतों में परिवर्तन तो करना ही होगा ना। वैसे मम्मी कितनी अजीब बात है ना कि धरती के 3/4 भाग पर पानी भरा है फिर भी मुझको सिर्फ 1 बाल्टी पानी से नहाना पड़ेगा। लेकिन मानव तुम्हें पता है ना, धरती के सारे पानी का करीब 97.2% भाग खारा पानी है जो समुद्रों में जमा है। हाँ दीदी लेकिन हमारे देश में कितनी सारी नदियाँ भी तो हैं।
3: लेकिन बेटा नदियों में भी कहाँ साल भर पानी रहता है बताओ तो।
2: वैसे भी भाई नदियाँ हमारे घर पानी देने थोड़े आ जाएंगी।
0: नदियाँ ना सही लेकिन हमारे यहाँ ट्यूबवेल तो लग ही सकता है। मानव तू बाथरूम में नहा रहा था या हमारी बातें सुन रहा था? दीदी वैसे मैं दोनों काम साथ साथ ही करता हूँ।
3: इसीलिए मानव तू ट्यूबवेल लगवाने की बात कर रहा है।
1: वैसे मम्मी साल के आधे दिनों में नल से पानी नहीं आता हो तो ट्यूबवेल तो लगवा ही लेना चाहिए।
0: जब ट्यूबवेल लग जाएगा ना तो तुम 2 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी से नहाओगे।
2: बच्चों यही तो हमारी सोच में बदलाव की जरूरत है। देखो हमें किसी भी चीज को जरूरत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक, हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए।
2: करें
0: अच्छा तुम्हारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन बताइए तो ट्यूबवेल वाली बात का क्या हुआ?
2: अरे वसुधा ट्यूबवेल तो जब कहो तब लग जाएगा। विवेक मुझे याद आया कि पिछले महीने तुम्हारे दोस्त वरुण के यहाँ ट्यूबवेल लगा था।
1: हाँ हाँ उसके यहाँ लगा था।
0: अरे विवेक तो फिर तुम उन बोरिंग वालों से बात कर लो ना।
1: अरे मम्मी बात करने को क्या कह रही हो, मैं उन्हें आज ही घर ले आता हूँ, मेरी उनसे अच्छी जान पहचान हो गई है।
2: तो विवेक मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा।
1: जी भी ठीक है।
0: मम्मी भैया आज बाजार जाएंगे ना तो आप मेरे लिए पिज्जा या नूडल्स मंगा लेना।
3: सुनिए जी ये आजकल घर का खाना कम और बाजार का अधिक खा रहा है बता देती हूँ।
2: अवल खाना तो मैं भी बाहर का ही जाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा वैसे पकाना तो मैं भी नहीं चाहती
2: हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बेटा मानव एक बात तो है कि घर का खाना ही शरीर को स्वस्थ रखता है, बाहर का खाना जितना कम हो उतना अच्छा। वसुधा मेरा लंच
0: किचन में रखा है। सृष्टि जा तो बेटा लंच लेकर आ पापा का।
2: अच्छा विवेक रुक जाते हैं।
1: जी जी
2: ओके वसुधा मिल हम
0: चलते हैं।
4: शायद विवेक भैया होंगे। मम्मी दीदी विवेक भैया के साथ राजीव अंकल भी है। नमस्ते
5: भाई साहब
3: कैसे हैं आप?
5: बस ठीक है। भाभी जी विवेक बता रहा था कि आप भी ट्यूबवेल लगवाना चाहती हैं।
3: हाँ भाई साहब क्या करें आजकल पानी की बड़ी किल्लत हो गई है।
5: और क्या है भाभी जी, अपना शहर ही नहीं बल्कि इस समय तो देश के अधिकतर क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
0: लेकिन अंकल, हमारे देश में तो इतनी नदियाँ, तालाब, झीलें हैं, फिर भी पानी की समस्या क्यों है?
5: देखो बेटे, गर्मी के आते आते अधिकतर नदियों, तालाबों जैसे सतही जल स्रोतों में पानी सूख जाता है।
0: हाँ अंकल, गर्मियों में तो पानी के लिए ट्यूबवेल पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
3: इसीलिए हम चाहते हैं कि घर पर जब ट्यूबवेल लग जाएगा तो पानी की चिंता ही नहीं रहेगी।
5: हाँ वो तो है भाभी जी, घर पर ट्यूबवेल होने से जब चाहे तब पानी भर सकते हैं।
1: अगर पानी निकल आए तो।
0: निकलेगा क्यों नहीं, जमीन के नीचे सब जगह पानी ही तो है।
5: देखो बेटे, नलकूप में पानी निकलना उस स्थान के भूजल स्तर पर निर्भर करता है, और आज लगभग सभी जगहों पर भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है।
3: बच्चों, तुम अंकल से बातें करो, तब तक मैं तुम लोग के लिए ठंडा लेकर आती हूँ, ठीक है?
0: ठीक है अंकल, हमारे इलाके में तो भूजल स्तर अच्छा ही होगा ना?
1: मानव, तुझे पता नहीं अपने चौराहे वाले नलकूप में पानी का स्तर कम हो गया है।
0: क्या, जल स्तर कम हो गया है? धरती में तो बहुत जल है, फिर धरती से ये जल कम कैसे हो गया?
3: धरती के समस्त जल की मात्रा का 0.78% भाग भूगर्भ जल के रूप में है।
5: हाँ, भूगर्भ जल की मात्रा पृथ्वी के समस्त जल राशि का 1% से भी कम है।
1: और पृथ्वी पर भूगर्भ जल का स्तर सभी जगह समान नहीं है।
0: तो क्या जमीन में नीचे सब जगह पानी नहीं है?
1: मानव, किसी भी स्थान पर भूगर्भ जल का स्तर इस तथ्य पर निर्भर है कि उस स्थान की संरचना कैसी है।
5: हाँ मानव, भू जल स्तर उस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के प्रकार व मिट्टी पर निर्भर करता है।
3: तो मिट्टी की अधिक जल धारण की प्रवृत्ति भू जल स्तर को बढ़ाती है ना अंकल?
5: हाँ बेटी, मिट्टी की नमी धारण की क्षमता जितनी अधिक होगी वहाँ भूमिगत जल स्तर उतना ही अच्छा होगा।
0: अच्छा, तो भूमिगत जल का स्तर किसी जगह की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक संरचना पर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल ठीक मानव, साथ ही उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा पर भी।
0: मतलब भैया, अच्छी वर्षा होगी तो भूजल स्तर भी बढ़ेगा, पर तब जब बारिश का पानी वहीं पर रोक ना लिया जाए, है ना?
1: बिल्कुल ठीक।
0: फिर तो रेगिस्तान जैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ तो भूगर्भ जल स्तर बहुत कम होगा।
5: हाँ मानव, लेकिन रेगिस्तानों में भी कहीं कहीं भूमिगत जल मिलता है जो कहीं कहीं सतह पर जलाशय का निर्माण भी करता है। ऐसे क्षेत्र नखलिस्तान या ओएसिस कहलाते हैं।
0: अंकल, हमारे देश में तो वर्षा का वितरण एक जैसा नहीं है, कहीं तो बहुत वर्षा होती है और कहीं बहुत कम।
5: हाँ बेटे, ये सही है कि भारत में सभी जगह समान वर्षा नहीं होती।
1: और अंकल, जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ भी तो भूमिगत जल स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश का कितना पानी धरती में पहुँचा।
5: हाँ बात तो सही है।
0: अच्छा, तो बारिश का जितना अधिक पानी धरती में रिस कर पहुँचेगा भूमिगत जल स्तर उतना ही बढ़ेगा। सही समझे माने तुम?
3: अरे बच्चों, अंकल को परेशान तो नहीं कर रहे हो तुम लोग?
5: अरे नहीं नहीं भाभी जी, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
3: अरे भाई साहब, इनकी तो आदत ही है बातें करने की।
0: और मम्मी की आदत है हमारे खाने पीने का ख्याल रखने की।
3: और आज सभी के लिए मैंने सत्तू का शरबत बनाया है।
0: सत्तू का शरबत? मम्मी, मुझे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है, क्या वो मिलेगा?
1: मानव, तुम्हें तो सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड के अलावा कुछ और पसंद भी है।
5: भाई मानव, ये सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड इसकी आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है भाई।
3: सही कहा भाई साहब आपने, फास्ट फूड से शरीर का संतुलित विकास भी कहाँ हो पाता है।
5: शायद
0: मानव को ये बात समझ ही लेनी चाहिए।
1: अंकल, मानव तो एक दिन समझ ही जाएगा। आप ये बताइए, हमारे यहाँ ट्यूबवेल कब लग रहा है?
5: भाई विवेक, अभी 10 दिन तो हमारी बोरवेल मशीन फ्री नहीं है। हाँ, उसके बाद तुम्हारा ट्यूबवेल जरूर लग जाएगा।
0: 10 दिन बाद?
5: हाँ?
0: अंकल, तो क्या आपकी बोर मशीन पहले से ही बुक है?
5: भाई मानव, गर्मी के दिन आते आते ही ट्यूबवेल लगवाने वालों की संख्या बढ़ जाती है।
0: और करे भी क्या, पानी तो सभी को चाहिए ही।
3: हाँ? हाँ, नहीं तो क्या, जब सतही जल स्रोत सूख जाते हैं तो सभी भूमिगत जल स्रोत पर आश्रित हो जाते हैं।
1: और अंकल, अकेले हमारे देश में ही ट्यूबवेलों की संख्या का आंकड़ा लाखों में है।
0: इतने ट्यूबवेलों से तो धरती का सीना छन्नी छन्नी हो गया होगा।
5: हाँ, और फिर पानी तो सभी को चाहिए, है ना? बच्चों, जब सतही जल स्रोत से पर्याप्त और शुद्ध जल पानी नहीं मिलेगा तो मानव कहाँ जाएगा?
0: अंकल, मानव कहीं नहीं जाएगा, वो तो यहीं रहेगा और 4 बाल्टियों से ही नहाता रहेगा।
1: फिर पीछे पड़ गई उसके। राजीव अंकल अपने मानव की नहीं बल्कि सभी मानवों यानी इंसानों की बात कर रहे हैं ना?
5: बिल्कुल ठीक विवेक, मेरे कहने का मतलब यही था।
3: अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए कि ट्यूबवेल में करीब कितना पैसा खर्चा होगा?
1: अंकल, वरुण के यहाँ जो हुआ उसके आसपास ही पैसा खर्च होगा, है ना?
5: शायद आपके यहाँ खर्च कुछ अधिक आया।
0: क्यों अंकल?
5: बेटे इस क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है।
0: ओह अच्छा अंकल।
5: हाँ बेटे, मैंने इस साल जितने भी नलकूप लगाए हैं सब में करीब 400 फीट से नीचे ही ठीक ठीक पानी निकला है।
0: 400 फीट नीचे?
5: हाँ, और ये जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है।
0: लेकिन अंकल मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भूगर्भ जल स्तर इतना कम क्यों होता जा रहा है।
5: देखो बेटे, अब जमीन से भूजल निकालने की मात्रा प्राकृतिक रिसाव से अधिक हो गई है।
0: अंकल ये प्राकृतिक रिसाव क्या होता है?
1: अंकल आप ही समझा दीजिए।
5: मानव लाखों करोड़ों वर्षों से बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर उतरता रहा है।
1: अंकल लाखों वर्ष पूर्व जमीन में उतरा पानी फॉसिल वाटर यानी जीवाश्म जल कहलाता है ना?
5: हाँ, बारिश या अन्य स्रोतों से पानी धरती की सतह से जमीन में रिसता रहता है। ये पानी जमीन के अंदर उपस्थित चट्टानों के बीच के रिक्त स्थान में जमा होता रहता है।
1: और मानव यही कहानी भूजल निर्माण की है, समझे?
0: तब तो अब धरती के अंदर पानी ही पानी हो गया होगा।
5: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मानव। इन चट्टानों में पानी को धारण करने की अपनी एक निश्चित सीमा होती है, पर जब इन चट्टानों के बीच की जगह पानी से लबालब भर जाती है तो पानी का ये स्तर उस स्थान का ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर कहलाता है।
0: तो अंकल इन दिनों भूजल स्तर की क्या हालत है?
5: मानव इस समय भूगर्भ जल के स्तर में भारी कमी आ रही है।
1: और जानते हो मानव, दक्षिण भारत में तो प्रतिवर्ष भूमिगत जल स्तर में 25 फीट की गिरावट हो रही है।
0: लेकिन हमारे देश में तो पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, फिर भी भूमिगत जल स्तर बढ़ता क्यों नहीं?
1: मानव पर्याप्त बारिश वाले क्षेत्र ही नहीं बल्कि जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उन इलाकों में भी भूजल स्तर में कमी देखी गई है।
0: ऐसा क्यों?
5: बेटे केवल अच्छी बारिश होने से ही भूमिगत जल नहीं बढ़ता।
3: हाँ, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए जल की पर्याप्त मात्रा धरती के भीतर पहुंचनी भी चाहिए।
1: और ये तभी संभव है कि बारिश के पानी को बहने ना दिया जाए, उसे वहीं रोक लिया जाए जहाँ पानी बरसता है।
0: और इसके लिए धरती पर पर्याप्त हरियाली का होना भी आवश्यक है। तो क्या पहले प्राकृतिक हिसाब से भूमि में जल की पर्याप्त मात्रा पहुंचती थी?
1: बिल्कुल मानव, पहले जनसंख्या कम थी, जंगल अधिक थे,
5: और अब तो हरियाली का नाम ही कहाँ बचा है। जहाँ देखो वहाँ कंक्रीट के जंगल ही नजर आते हैं।
0: कंक्रीट के जंगल?
3: अरे मानव, राजीव अंकल सीमेंट रेत से बने सड़कों मकानों की बात कर रहे हैं।
5: हाँ।
0: लेकिन कंक्रीट के जंगल से भूमि का जल का क्या संबंध?
5: देखो बेटे, सीमेंटीकरण से धरती पर गिरने वाली बारिश का पानी जमीन में नहीं रिस पाता,
0: और इस प्रकार बारिश का अधिकतर पानी व्यर्थ बह जाता है। तो क्या हुआ, ये पानी नदियों नालों और तालाबों में तो पहुंचता ही है।
1: मानव वर्षा का पानी सीधे नदियों नालों और तालाबों में अकेले नहीं पहुंचता, वो अपने साथ मिट्टी की बहुत सी मात्रा जल स्रोतों में जमा कर देता है, समझे?
3: मिट्टी की अधिक मात्रा से सतही जल स्रोतों की गहराई कम हो जाती है, जिसके कारण ही अधिकतर जल स्रोतों में पानी नहीं जमा हो पाता, और होता भी है तो बहुत कम।
5: हाँ, पहले तो झीलों तालाबों में जमा पानी इसका धरती में समाता रहता था।
0: अच्छा, तो यही कारण है कि पुराने समय में भूमि का जल स्तर अच्छा था।
3: अब से करीब 30-40 साल पहले मानव नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों में कुछ ही फीट खोदने पर जमीन से पानी निकल आता था, मालूम है?
5: और अब तो सैकड़ों फीट खोदने पर भी पानी का अता पता नहीं होता।
1: अंकल हमारे देश के कई राज्यों में भूमिगत जल का स्तर सैकड़ों फीट नीचे उतर गया है।
5: और ऐसा मानव के कारण ही हुआ है।
0: मेरे कारण? मैंने क्या किया? वो बाल्टी पानी से नहाता है और पूछता है मैंने क्या किया।
1: सृष्टि फिर से
0: मुझे बेवजह बदनाम कर रही है।
3: बेटा सृष्टि तुझे बदनाम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो तो सब मजाक कर रही है।
1: और मानव राजीव अंकल का मतलब तुझसे नहीं बल्कि सारे समाज से है।
0: अच्छा, अब मैं समझा कि हमारा भूमि का जल स्तर निरंतर कम क्यों होता जा रहा है। हमने जंगलों को नष्ट कर कंक्रीट के जंगल बनाने के साथ ही प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ा है। क्यों भैया, ठीक कहा ना मैंने?
1: बिल्कुल ठीक कहा मानव।
3: और मानव अनियंत्रित विकास से अब तक तो सतही जल स्रोतों को ही खतरा था, लेकिन अब तो भूमिगत जल स्तर पर भी खतरा मंडरा रहा है।
0: गिरते भूगर्भ जल स्तर से तो ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि अब भूजल स्रोत भी मानवीय स्वार्थ की भेंट चढ़ जाएगा।
5: मानव अपनी बढ़ती जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमिगत जल का भरपूर दोहन कर रहा है।
1: अंकल मैंने सुना है अकेले यूरोप में 80% पेयजल की आपूर्ति भूजल से ही होती है।
5: हाँ, तो बच्चों में क्या बता रहा था कि भूमिगत जल का दोहन समय के साथ साथ बढ़ रहा है।
1: हाँ अंकल, विकासशील देशों में तो कुल जल की 80 से 85% मात्रा कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है।
0: अंकल, इसमें भूजल की मात्रा कितनी होती है?
5: बेटे, अकेले भारत में सिंचाई के लिए उपयोग किए जल की आधी से अधिक मात्रा भूजल की होती है।
3: और हाँ बच्चों, विभिन्न कृषि फसलों में जल की खपत भी अलग अलग है।
5: और हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में बोई जाने वाली गन्ने की फसल है, जो कुल भूमि के 2.5% भाग पर बोई जाती है, लेकिन इसके लिए कुल पानी का 60% भाग खप जाता है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब चीनी की मिठास में पानी की बहुत मात्रा खप जाती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जानते हो, जो तुम्हें ये सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है ना, उसकी एक छोटी बॉटल के निर्माण में भी करीब 3-4 लीटर पानी लग जाता है।
0: अच्छा भैया, सॉफ्ट ड्रिंक की एक बोतल के पीछे 30 बोतल बराबर पानी लग जाता है।
1: सृष्टि,
5: इतना ही नहीं, उद्योगों में कृषि में प्रयुक्त रसायनों से सतही जल के साथ ही अब तो भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
3: ठीक कहा भाई साहब आपने, तभी तो कभी कभी हमारे यहाँ नल में आने वाला पानी बदबूदार होता है।
0: अंकल, हमारे यहाँ लगने वाले ट्यूबवेल में तो साफ पानी आएगा ना?
5: हाँ, साफ पानी निकालने के लिए हमें धरती की अधिक गहराई से पानी निकालना होगा।
3: क्या भाई साहब, अधिक गहराई पर भूगर्भ जल क्या शुद्ध होता है?
5: हाँ, भूगर्भ की ऊपर जल की तुलना में अधिक गहराई का जल अधिक स्वच्छ होता है।
3: भाई साहब, लगता है आप हमारी ट्यूबवेल का बजट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
1: वैसे भी अंकल, अब तो कई जगह जो भूमिगत जल उपयोग किया जा रहा है वो तो हजारों लाखों वर्ष पुराना फॉसिल ग्राउंड वाटर है।
0: तो इसका मतलब हम धरती के जल भंडार को तीव्र गति से खाली कर रहे हैं।
1: मानव यही नहीं, भूजल के दोहन के साथ मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।
5: हाँ मानव, जिस प्रकार से भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भूमिगत जल भंडार खत्म होने में अधिक वर्ष नहीं लगेंगे।
3: सही कहा भाई साहब आपने, हमारे देश के अनेक भागों में भूमिगत जल में आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे रसायनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है।
1: और मम्मी, इस अशुद्ध जल के सेवन से करोड़ों लोग बीमारी का शिकार भी तो हो रहे हैं।
0: भैया, तो आपने शुद्ध जल कहाँ से लाए? अधिकतर सतही जल तो प्रदूषित हो ही चुका है और अब तो भूमिगत जल भी शुद्ध नहीं रहा।
3: हाँ मानव, कभी अमृत समझे जाने वाला गंगा यमुना नदियों का ये जल पहले ही प्रदूषित हो चुका था, अब तो भूजल भी प्रदूषित हो गया है।
5: हाँ, भाई भाभी जी, पानी की बातें करते करते आप तो मुझे पानी पिलाना ही भूल गई।
3: मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, ठीक है?
0: मम्मी, हम सबके लिए भी लेते आना।
3: भला सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला मानव नींबू पानी कब से पसंद करने लग गया?
0: आज सही दीदी, कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
5: परंपरागत शीतल पेय बाजार के सॉफ्ट ड्रिंक से लाख गुना बेहतर है।
1: और अंकल, भारत में तो जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन समय से ही है, फिर भी भारत जैसे देश में पानी की समस्या गहरा रही है।
5: हाँ विवेक, हमारे देश में तो वर्षा जल संग्रहण की कई प्रणालियां प्रचलित थी, लेकिन विकास के नाम पर जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियों की उपेक्षा से जल संकट की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।
1: अंकल, हमारे देश के राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में तो वर्षा की बूंद बूंद को सहेजने की प्रथा थी।
3: शायद तभी बूंद बूंद जल से घड़ा भरने की कहावत बनी। लीजिए भाई साहब,
5: थैंक यू बाबूजी, बहुत जरूरत थी इसकी।
0: मम्मी, प्राचीन भारत के लोग जल की बूंद बूंद का बड़ी कुशलता से उपयोग किया करते।
5: बेटे, वर्तमान में भी हमारे देश में कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने पारंपरिक जल प्रणालियों को पुनर्जीवित किया है।
0: अंकल, रूफ

0: हार्वेस्टिंग भी तो वर्षा जल संग्रहण के लिए स्थापित की जाने वाली प्रणाली है ना? हमारे स्कूल में भी ऐसा ही किया जा रहा है।
1: हाँ बेटे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में सरकारी और निजी भवनों की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संग्रह कर पाइपों द्वारा सीधे जमीन में उतारा जाता है।
0: मम्मी, तब तो हमें भी अपने घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगवा ही लेनी चाहिए।
2: क्यों नहीं बेटा, भूमिगत जल स्तर में हमें भी तो अपना योगदान देना चाहिए।
1: हाँ भाभी जी, यदि भूमिगत व सतही जल दोनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो काफी हद तक पानी की समस्या हल हो सकती है।
3: आज हम जितना पानी बचाएंगे कल वही पानी हमारे काम आएगा।
0: मतलब अब हमें भी पानी की गुल्लक बनानी पड़ेगी।
3: हाँ, लेकिन हमारी पानी की गुल्लक ऐसी होगी जिसमें कोई भी पानी जमा कर सकेगा।
0: हमारे परंपरागत तालाब, कुएं, कुंडी, पोखरे, जोहर, झीलें भी कुछ ऐसी गुल्लकें थी जिनमें हम भूमिगत जल को सहेज कर रखते थे।
1: ठीक कहा सिस्टर तुमने, और आज इन जल संचयन प्रणालियों को आधुनिक तकनीक द्वारा और भी कुशल बनाए जाने की आवश्यकता है।
3: हाँ अंकल, गहराते जल संकट से निपटने के लिए हमें जल संग्रहण के तमाम तरीकों को अपनाना होगा।
0: मैं एक अच्छा तरीका बताऊँ भूजल स्तर को सुरक्षित रखने का?
1: हाँ
0: दीदी बताओ ना। मम्मी, मानव यदि नहाने के लिए दो के बजाय एक बाल्टी से ही काम चला ले तो भी जल की बहुत सी मात्रा सुरक्षित रह सकती है।
2: ये तो सही कहा सृष्टि तुमने, लेकिन तुम हमेशा मानव के पीछे क्यों पड़े रहते हो?
3: पर मानव, तुम्हारा क्या कहना है?
0: भैया, मैं अब नहाने में ही नहीं बल्कि सभी कार्यों में पानी को बर्बाद करूंगा। मेरा मतलब है कि नहीं करूंगा।
1: बहुत अच्छे बेटे, बस इसी प्रकार हर इंसान जल के संरक्षण के लिए प्रयासरत हो जाए तो फिर भूमिगत जल लाखों वर्षों तक जीवन को बनाए रखेगा।
3: अंकल, जब हमारा मानव जल की महत्ता समझ गया तो हमें विश्वास है कि एक दिन मानव यानी समाज भी प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजना सीख लेगा।
0: भैया, मेरा उपहार कहाँ है? पिज्जा, नूडल्स,
3: मानव।

मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 23वीं कड़ी सुन रहे थे, धरती का अमृत।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भागना नहीं, मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना।

0: गाना बजा दूं।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये कर

0: होता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है, ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है, इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है, पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनोशादा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी

आता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
6: सरप्राइज पार्टी?
5: हाँ।
6: हमें पता ही नहीं है।
5: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural intervention.

आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पून, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
1: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
2: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
1: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
2: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है। इसमें खर्च भी कम होता है।
1: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
2: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
1: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
2: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
1: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
2: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: और छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
2: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो, तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
1: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है, तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। TRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। TRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।